कभी कभी हम फोन में बहुत सारे मैसेजेस टाइप तो करते हैं लेकिन सेंड नहीं कर पाते। कई बार कुछ ऐसा ही हाल दिल का भी होता है। यूं तो दिल में कहने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन समझ नहीं आता कि कहां से शुरू किया जाए, और फिर इंसान चुप हो जाता है क्योंकि कुछ फीलिंग्स को वर्ड्स नहीं, एक समझने वाला इंसान चाहिए, और जनरली हमारे पास वो समझने वाला इंसान नहीं होता, और इसीलिए हमारे शब्द भी हमारे वर्ड्स भी अनस्पोकन रह जाते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आपके वर्ड्स को समझता है और उन्हें रिस्पेक्ट देता है तो यार बहुत लकी हैं आप। और उसी बंदे के नाम प्ले करती हूँ फिलहाल ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून मेरे साथ, यूं ही सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 एम पर।

कहते हैं अपने मन की बात उससे कहनी चाहिए जो आपकी बात को 10 बार सुनने के बाद भी 11वीं बार उसी प्यार, उसी मोहब्बत, उसी रिस्पेक्ट के साथ आपकी बात सुने, उतने ही पेशेंस के साथ वो उसका हर एक वर्ड ध्यान दे। वो आपके हर एक अल्फाज, हर एक कहे गए वर्ड्स को कुछ इस तरह से संभाल कर रखे जैसे कोई अपनी फेवरेट बुक को पढ़ने के बाद भी उसे अपने पास संभाल के रखता है। जी हाँ, क्योंकि आप जिनसे अपनी बात कह पाए ऐसे लोग तो बहुत होंगे, आपके आसपास अभी भी होंगे, लेकिन वो एक इंसान जिसके लिए आपके हर एक वर्ड की अहमियत है, वो इंसान जिंदगी में एक या दो ही होते हैं। आपकी जिंदगी में है कोई ऐसा? आइए उस बंदे के नाम एंजॉय कीजिए फिलहाल ये अगला ट्रैक और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।

कभी कभी मुझे क्या लगता है, कभी कभी लगता है कि इस दुनिया में समय को छोड़कर कोई अपना नहीं है। अब देखिए ना, अगर आपका समय सही है, अगर आपका समय आपका अपना है तो सब आपके अपने हैं। और अगर ये समय पर आया हो गया, आपका समय सही नहीं चल रहा है, तो फिर लाइफ में कोई भी अपना नहीं रह जाता। इसीलिए शायद कहा गया है कि भाई समय की बहुत वैल्यू और बहुत कीमत है, तो इस समय की कद्र करिए, क्योंकि अगर एक बार ये समय हाथ से फिसला, हाथ से निकला, तो फिर बाबू मोशाय आप जानते हैं ना, हाँ फिर आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। सो टाइम की वैल्यू करना बहुत जरूरी है। इसी टाइम के नाम आइए सुनते हैं अभी अगला ट्रैक, मिलकर एंजॉय कीजिए और हमारे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर।

आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बट आप भी सोचेंगे तो पाएंगे कि आज भी आधी से ज्यादा दुनिया भरोसे पर ही चलती है। अब देखिए ना, जब आप सुबह उठते हैं और आपको कहीं जाना होता है बस या कैब से, तो आपको भरोसा होता है कि आपका ड्राइवर आपको टाइम से आपकी प्लेस पर पहुंचा देगा। जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या बड़े बड़े ट्रांसफर्स करते हैं, तब भी हमें ये भरोसा होता है कि पैसा सही जगह ही पहुंचेगा। जब हम किसी अनजान से दोस्ती करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन नहीं करते लेकिन अपना दिल दे देते हैं, अपना भरोसा दे देते हैं, क्योंकि भरोसा होता है कि ये बंदा हमारे साथ गलत नहीं करेगा। और जब प्यार भरा कोई रिश्ता बनाते हैं तो अपना सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि भरोसा होता है कि ये और मैं एक ही तो हैं। देखिए, भरोसा कोई कमजोरी नहीं है बल्कि भरोसा हिम्मत है, और भरोसा कोई बेवकूफी नहीं है। जो लोग आपको ये बोलते जा रहे हैं कि भरोसा करोगे तो तुम बेवकूफ बन जाओगे और पहले की तरह ही चोट खाओगे, तो हाँ, भरोसा टूट सकता है, गिर सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस पर दाग लग जाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भरोसा करना गलत है, क्योंकि गलत इंसान हो सकता है जिस पर आपने भरोसा किया, गलत समय हो सकता है, पर भरोसा गलत नहीं होता है। हाँ, ये तो इसी भरोसे के नाम सुनवाती हूँ आपको ये अगला ट्रैक। मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस, आपके मॉर्निंग वाले ब्रेकफास्ट शो को।

सो वेलकम बैक, इट हैपेंस में सताक्षी के साथ हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी पर। यू नो, लाइफ में एक दिन जरूर ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और उस वक्त ना तो लोगों की तालियां आपके लिए मैटर करती हैं और ना ही पैसों की गिनती। उस वक्त सिर्फ एक सवाल होता है आपके साथ, क्या मैंने अपनी जिंदगी जी है? क्या मैंने अपने सपनों का पीछा किया था? क्या मैंने लाइफ में रिस्क लिया? क्या मैंने उन लोगों को वक्त दिया जो मेरे लिए जरूरी थे? या फिर मैंने अपनी पूरी जिंदगी डर, ओवरथिंकिंग और एक दिन जरूर करूंगा मैं निकाल दी। यू नो, जिंदगी की अहमियत उसकी लेंथ से नहीं, उसे जीने के तरीके से होती है। इसलिए ऐसे डिसीजंस लीजिए, ऐसे लम्हे बनाइए कि जब आपकी पूरी लाइफ आपके आगे से गुजरे तो आप मुस्कुरा कर कह सकें, हाँ ये मेरी जिंदगी है। और चलिए उसी जिंदगी के नाम पेश करते हैं ये अगला ट्रैक। हमारे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी पर।

वेल फ्रेंड्स, ये था आज इट हैपेंस पर मेरा आपके साथ एक और बेहतरीन सार। आई होप कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा। सो बस जिंदगी के कुछ ऐसे ही लम्हों को लेकर आपसे मिलती रहूंगी, क्योंकि हम जानते हैं हर सुबह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आज एक और बेशुमार और प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह के नाम आज का ये लास्ट ट्रैक इस प्रोग्राम का। रेडियो प्रस्थानी सुनते रहिए, क्योंकि रेडियो प्रस्थानी पर और भी बहुत कुछ खास है आपके लिए। फिलहाल ये वक्त है आपका आपकी जिंदगी की ओर बढ़ने का। तो सताक्षी को दीजिए इजाजत। हैव अ ग्रेट डे, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। नमस्कार।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारी।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 1 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेंबर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेंबर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वन सर वाले एम ते जी आर चे संदेश चौलक दिना उससे बने हुए। अगली फिल्म थो...

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार ले लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है, इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi guys, I'm Madhvi, one of the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi, this is Salman Khan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
10: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani
13: से। To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।
15: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
16: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
15: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
16: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
15: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
17: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
18: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
17: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
18: बिल्कुल, ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्सोर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
19: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच अग लगती है, ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा।
4: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
7: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
8: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
7: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन।
20: ऑल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट, सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

7035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिट सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2000

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और सबसे पहले, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, कैसे हो आप। जी हाँ, क्या आपने मेरा इंतजार किया, क्या आप मेरी राह देख रहे थे कि कब निव्या शर्मा आएगी, हमारी आरजे निव्या आएगी, हमें एंटरटेन करेगी, इवनिंग वाइब लेकर आएगी और वो प्रोग्राम में हम गपशप करेंगे, मजेदार गाने अपने फरमाइश करेंगे। क्या आप इस सब चीजों की राह देख रहे थे, क्योंकि मैं तो देख रही थी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की एक हेल्दी रिचुअल के साथ, और वो रिचुअल है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। सबसे पहले क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ अच्छा फील करते करते अब हम जाने वाले हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत की तरफ। मतलब प्रोग्राम की शुरुआत होगी बढ़िया से गाने के साथ, क्योंकि आपको पता है इवनिंग वाइब में सिर्फ मैं बकबकी नहीं करती हूँ, कच कच नहीं करती हूँ, पिचपिच नहीं करती हूँ, बल्कि हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत गाने भी प्ले करते हैं। सो वी आर गोना डू दैट। जो गाना बहुत ही खूबसूरत मैं प्ले करने वाली हूँ आपके लिए, वो है बिन तेरे कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे। तो शुरू करते हैं इससे और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ वक्त हो गया है मौसम के बारे में बात करने का। भाई प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है और गाने तो आप देखिए, सोनिया सोनिया, मतलब कुछ गाने जस्मिन सैंडलेस ने ऐसे गाए हैं ना कि आप फील ले ही जाओगे उन गानों की। मतलब अगर आप लोगों को शादी नहीं भी करनी है तो भी आप इस गाने की फीलिंग जो है वो ले लोगे, क्योंकि इस गाने का नाम है लावा, जो कि अगेन शादी से रिलेटेड है। चलिए इसी के साथ यहाँ पर अब जरा बात करते हैं मौसम की। सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस के करीब, और अभी की अगर बात की जाए तो 24.1 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 24 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, दिन की बात हो गई तो रात की बात करें, 14 डिग्री सेल्सियस तक आपको तापमान रात में देखने को मिलेगा। जी हाँ, और इसी के साथ जैसे मैंने कहा था कि बारिश के चांसेस होंगे, 70% चांसेस थे बारिश के, 1 to 5 mm बारिश होती हुई मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे 5 बजे तक मुझे बारिश दिख रही है और 5 बजे के बाद मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है। मतलब 5 बजे तक भी मुझे थोड़ी कम कम ही बारिश दिख रही है, कुछ इलाकों में ही होगी और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी ही हो सकती है, इसके अलावा ज्यादा बारिश मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन 10 बजे के बाद फिर से बारिश शुरू होने के चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, तो ये तो है आज के मौसम का हाल। वहीं अगर बात की जाए एयर क्वालिटी की तो एयर क्वालिटी है एकदम एक्सलेंट। जी हाँ, आज की बात हो गई तो अब चलते हैं कल की तरफ, यानी कि वेडनेसडे एंड थर्सडे की तरफ। वेडनेसडे यानी कल 26 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 70% चांसेस बारिश के अगेन। जी हाँ, मतलब बारिश होती हुई आपको कल भी नजर आ सकती है। और इसी के साथ थर्सडे को पूरी तरह सूरज खिला खिला नजर आने वाला है विद 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैक्सिमम और 20% चांसेस है बारिश के, जो कि अगेन ना के बराबर है। बट या थर्सडे को मौसम जो है वो पूरा खुला खुला और खिला खिला नजर आने वाला है, लेकिन कल बारिश हो सकती है तो उसके लिए रेडी रहिए, छातों के बिना ना निकलिएगा। और इसी के साथ यहाँ पर एक और जबरदस्त सा गाना आप सबके लिए।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों यहाँ पर अब मौसम की बात भी हो गई है, प्रोग्राम की शुरुआत भी हो गई है, अब जरा बात करते हैं आपकी फरमाइशों की, यानी कि आपके वो गाने जो आपको बहुत अजीज हैं, आप रिक्वेस्ट करते हो, रिकमेंड करते हो और कभी कभी तो किसी को डेडिकेट भी करते हो, उन्हीं गानों के बारे में बात हो रही है क्योंकि आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो विद योर फरमाइशी सॉन्ग्स। जी हाँ, तो करना क्या है, आपको फोन उठाना है, नंबर डायल करना है, नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं, हमारी तरफ से एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

जी दोस्तों, इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं रोबोटिक कॉन्फ्रेंस की, जो कि बेजिंग में हुई। ऑफ कोर्स हमने पिछले कल भी इसके बारे में बात की थी। कहा चाइना जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि रोबोटिक फील्ड में वो सबसे ज्यादा आगे हैं, लेकिन उनके बहुत सारे रोबोट्स तो ऐसे थे जिन्होंने हमें इतना ज्यादा हंसाया कि कुछ कुछ हरकतें देख के तो आप लिटरली हंस हंसते गिर ही जाते। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा तुम हंसते हंसते गिरती बहुत हो, माजरा क्या है? आई डोंट नो, जब मुझे कोई बहुत ही फनी चीज दिखती है और मैं हंसती रहती हूँ तो एक टाइम आता है कि मैं हंसते हंसते गिर जाती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, बीजिंग कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें हुई। जी हाँ, जहां पर अलग अलग रोबोट्स ने डिफरेंट चीजें करके दिखाया। कुछ बहुत ही ज्यादा रियल दिख रहे थे, कुछ ने गेम खेलने की कोशिश की और कुछ ने वेट उठाने की कोशिश की। जी हाँ, अब वेट उठाने की कोशिश करता हुआ एक रोबोट जो है वो बहुत ज्यादा इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, क्योंकि उसके सामने जजेस बैठे हुए थे, वो वेट उठाने की कोशिश कर रहा था, फिर पता नहीं उसे वेट उठाते उठाते क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ अजीबोगरीब चीजें जो है वो फील होने लगी, और फिर उसके बाद जो है उसने वेट को एक जगह से छोड़ा, दूसरे हाथ से छोड़ा, और फिर वो धीरे धीरे जजेस की तरफ बढ़ने लगा, और फिर जजेस की तरफ बढ़ता वो गिर गया। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, आपको जरूर देखनी चाहिए। जी हाँ, मतलब आई डोंट नो उन्होंने कितनी स्पॉटलाइट जो है वो स्टील की है, पर उन्होंने डेफिनेटली बहुत सारा लाफ्टर जो है वो स्टील किया है, क्योंकि लोग उनको देख के हंस रहे थे। ऑफकोर्स जो उनको बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो तो ऐसे सोच रही थी कि ये क्या कर रहा है, हमने इसे क्या करने के लिए बोला है और ये क्या कर रहा है। बट अगेन, जो लोग वहां पर थे जो कि अगेन उस चीज को देखना चाहते थे, अच्छे से इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे अपनी आंखों में, वो लोग बहुत ज्यादा हंसते हुए नजर आए। सो चाइना ने डेफिनेटली ये तो दिखा दिया है कि उनके बहुत सारे रोबोट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा गजब के हैं, पर उन्होंने ये भी दिखा दिया है कि बहुत सारे रोबोट्स जो हैं वो ऐसी स्टेज में जिनको कुछ भी ना समझ आ रहा, मतलब आप उनको वेट उठाने के लिए बोल रहे हो तो वो जिम्नास्टिक करना शुरू कर दे रहे हैं, आप उनको जिम्नास्टिक करने के लिए बोल रहे हो तो वो रनिंग करना शुरू कर दे रहे हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है। सो डेफिनेटली यू शुड सी द वीडियो, जो कि रोबोट है जो वेट लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, फिर उसे पता नहीं क्या होता है। मतलब अगर हम उसे इंसानी लैंग्वेज में बोलते तो ऐसा लग रहा था उसको कॉन्स्टिपेशन होगी एकदम से, और फिर वो यहां वहां जाने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक ही वॉज लुकिंग फॉर अ वॉशरूम और समथिंग। अगर वो इंसान होता तो हमें ऐसा लगता, बट इट वॉज रोबोट, सो ऑफकोर्स इट वॉजंट द रीजन। Then what was the reason? We don't know. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए, मेरी तरफ से नहीं है बल्कि ये गाना जो है एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, फरमाइशी गीत है, और इसकी फरमाइश की गई है हमारी बहुत ही क्यूट लिसनर की तरफ से। जी हाँ, सो हमारे बहुत ही क्यूट लिसनर है क्रिस जी एंड विनी जी, उन्होंने इस फरमाइश को किया है क्योंकि आज उनकी 14th ईयर एनिवर्सरी, ब्राइडल शावर एनिवर्सरी है। सो सबसे पहले हैप्पी 14th ईयर ब्राइडल शावर एनिवर्सरी टू यू गाइज। मतलब आप लोग बहुत ही क्यूट हो, ऐसे ही प्यार देते रहिए हमारे प्रोग्राम को, ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवानी को, और ऐसे ही प्यारे प्यारे पलों में हमें शामिल करते रहिए अपने में, और ऐसे ही खुश रहिए, ऐसे ही प्यार में बने रहिए, यही हम आपके लिए दुआ करते हैं क्रिश जी एंड विनी जी। और ये रहा आपका वो खूबसूरत सा गाना जो आपने किया है फरमाइश।

जी दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रह्मवाणी 107.1 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों और इसी के साथ यहाँ पर एक और बहुत ही दिलचस्प चीज है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। एंड मैं इनके बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि प्रिंसेस डियाना जो है वो बहुत ही लेजेंडरी कैरेक्टर जो है वो रही है। ऑफकोर्स ब्रिटिश रॉयल्टी में तो है ही, लेकिन उनकी जो लोकप्रियता थी वो किसी भी ब्रिटिश रॉयल को पीछे छोड़ देती। मतलब अगर लोगों की वोट अगर चलते और लोगों के वोट से अगर रॉयल सीट्स पर बैठते, कुर्सी मिलती उनको, वो थ्रोन मिलती, तो शायद प्रिंसेस डियाना को वो अपनी क्वीन बना देते। जी हाँ, आपको पता नहीं है लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जब प्रिंसेस डियाना की शादी हुई थी, जी हाँ आपने सुना होगा, प्रिंसेस डियाना की शादी जो है जब हुई थी तो बहुत सारे लोग जो है वो वहां पर इकट्ठा हुए थे, बहुत सारे लोग जो है वो उस शादी को देख रहे थे। और उस वक्त जो है वो 1997 में कोई स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, मॉडर्न सोशल मीडिया नहीं होता था, लेकिन टीवी के थ्रू और वहां पर लाइव आकर लोगों ने प्रिंसेस डियाना को अपनी सपोर्ट दी थी। कैन यू इमेजिन द नंबर्स, कितने लोग उस शादी को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे? 750 मिलियन पीपल। जी हाँ, डियाना, प्रिंसेस डियाना की वेडिंग के लिए 750 मिलियन लोग जो है वो इकट्ठा हुए थे। ये आज दिन तक किसी भी रॉयल के लिए नहीं हुआ था, आज भी नहीं हुआ है। प्रिंसेस डियाना के दो बेटे हैं, उनके लिए भी ऐसा नहीं हुआ, प्रिंस हैरी और प्रिंस चार्ल्स, बट यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस डियाना के लिए हुआ। लेकिन प्रिंसेस डियाना की शादी तो 750 मिलियन लोगों को एक साथ लेकर आई। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं जब प्रिंसेस डियाना का फ्यूनरल था तो कितने लोगों ने उसे देखा था? इमेजिन कीजिए, मतलब इट्स नॉट इवन मिलियंस, वो बिलियंस में है नंबर। जी हाँ, इट वॉज 2.5 बिलियन पीपल। जी हाँ, 2.5 बिलियन पीपल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मिलियंस, वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस। 750 मिलियन जो कि उनकी शादी को देख रहे थे, जिन पर नजर थी, जिनकी नजर थी उनकी शादी पर, लेकिन जब प्रिंसेस डियाना का फ्यूनरल था तो उसे देखने के लिए 2.5 यानी कि 2.5 बिलियन लोग जो है उस पर नजर बनाए हुए थे लाइव एंड ऑफकोर्स टीवी के थ्रू। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्या था प्रिंसेस डियाना में जो उनको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाता था। आप बहुत सारे रॉयल्स को ऐसे चैरिटी वर्क करते हुए देखेंगे, ऐसी रॉयल ड्यूटीज में देखेंगे जहां वो ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां वो गरीब बच्चों को या फिर यू नो व्हाट, जो बहुत ज्यादा जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ऐसी कम्युनिटीज के पास जाते हैं, उनके बच्चों के साथ जो है वो मिलते जुलते हैं, राबता करते हैं, ऐसे बहुत सारे रॉयल्स को आप देखेंगे। लेकिन प्रिंसेस डियाना वॉज द ओनली रॉयल जो कि ये बहुत ही दिल से करती थी। जी हाँ, मतलब प्रिंसेस डियाना अगर किसी भी चैरिटी वर्क में जाती थी, चैरिटी इवेंट में जाती थी, तो आप उनको देख के बता सकते थे कि शी वॉज सो गुड एंड शी वॉज सो रियल, कि वो जो कर रही है वो रियलिटी में कर रही है। वो इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उनकी रॉयल ड्यूटी है या कुछ, एंड दैट्स व्हाई पीपल यूज टू लव हर। ऑफकोर्स उनकी फैशन स्टेटमेंट, उनकी जो चेहरा था, खूबसूरती थी, दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, बट जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क और जो खूबसूरत शख्सियत वो अपने साथ लेकर आती थी उसके लिए भी लोग उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते थे, एंड दैट वॉज द रीजन 2.5 बिलियन लोग। इमेजिन कीजिए, उस वक्त भी स्मार्टफोन्स नहीं थे, उस वक्त भी मॉडर्न सोशल मीडिया था ही नहीं, बट फिर भी लोगों ने नजर बनाई। प्रिंसेस डियाना इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड रॉयल्स इन द हिस्ट्री ऑफ रॉयल्टी, नॉट जस्ट ब्रिटिश रॉयल्टी, बट ऑफकोर्स अगर हम बाकी कंट्रीज की रॉयल्टीज की भी बात करें तो अगेन उनकी डेथ जो है वो ऐसे सर्कमस्टांसिस में हुई जहां पर उनका पीछा कर रहे थे मीडिया वाले और वहां पर उनका एक्सीडेंट हुआ। कुछ लोग कहते हैं उन्हें ब्रिटिश रॉयल्टी ने ही मरवा दिया, जी हाँ उनका कत्ल करवा दिया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रिंसेस डियाना आज भी जिंदा है, वो बहुत ही अच्छे से इस लाइमलाइट के पीछे की जो बिना जो है अपनी जिंदगी को बहुत ही खूबसूरती से जी रही है। लेकिन ये सारे के कयास है, रियालिटी क्या है वी डोंट नो, बट द थिंग वी नो फॉर श्योर इज दैट प्रिंसेस डियाना वॉज द मोस्ट लव्ड रॉयल ऑफ ऑल द टाइम। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Digicel, better together.
5: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
6: ताल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।
7: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
8: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे निविया। शो चल रहा है इवनिंग वाइब। दोस्तों, एक चीज ना मुझे हमेशा बहुत ही ज्यादा अचंभित करती है और वो है वेस्ट का ये एशियन चीजों को बहुत ही अच्छे से ले लेना और उसको क्रेडिट ना देना। जी हाँ, सो अगर आप लोग अपडेटेड नहीं हो तो थोड़ा अपडेट मैं आपको कर दूँ। एक हर्ब है, बेसिकली एक फ्लावर है जिससे बनने वाली चाय यानी कि टी एंड सिरप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो गए हैं मार्केट में। अगर आपने इस फ्लावर को नहीं देखा है तो इसे बटरफ्लाई पी यानी कि ब्लू बटरफ्लाई पी के नाम से जो है वो पुकारा जा रहा है। ऑफकोर्स इसके इंग्लिश नाम और भी डिफरेंट है। जी हाँ, और इसे अपराजिता या शंख पुष्पी जो है वो हिंदी में कहा जाता है। अब अगर आप मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो ऐसा कहा जाता है कि मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये आपको काम बनाती है, इसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और अब यूएस और खासकर जो वेस्ट की मार्केट्स है वो इसको लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, वहां के लोग जो है इसको लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये आपने पहले भी देखा होगा, लाइक व्हेन अश्वगंधा हैपेंड, जी हाँ, अश्वगंधा जो है वो हमेशा से आयुर्वेदा में जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा है। अश्वगंधा के अलावा जो है फोक्स नट्स यानी कि जो मखाना है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए अच्छे हैं, कैल्शियम रिच हैं, वो हमेशा से हमें पता है। लेकिन इंडियन लोगों को ये हमेशा से पता था और वो यूज भी करते थे, वेस्ट को जो है अब इन चीजों के बारे में पता चला है और अब वो इन चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अपने खाने में हल्दी डालते हैं और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एलिमेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो चीज होती है जिसका नाम होता है कर्क्यूमिन, जी हाँ, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, मतलब कितनी सारी चीजों में वो हमें रिकवर करने में हेल्प करती है, बहुत ही अच्छा सब्सटेंस है। लेकिन वेस्ट को जो है इनके बारे में पता ही नहीं था, अब उन्हें पता चल रहा है और अब जो है वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए। बट द थिंग इज कि बहुत सारी चीजें जो है वो अब जो है वो वेस्ट अपने अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर रहा है। जैसे आप स्टारबक्स जाओ तो स्टारबक्स वाले आपको गोल्डन मिल्क जो है वो दे रहे होते हैं, और गोल्डन मिल्क एग्जैक्टली क्या है, जी हाँ, क्या है, वो हल्दी वाला दूध है। अब हल्दी वाला दूध जो है वो आपको स्टारबक्स देता है तो आप बड़े ही मजे से पी लेते हो, लेकिन जब आपकी मम्मी आपको देती है तो आपको ऐसा लगता है ये क्या है, ये थोड़ी पीते हैं ऐसे ऐसे करके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि बटरफ्लाई पी या फिर ब्लू बटरफ्लाई पी या पराजिता या शंख पुष्पी जो है इज नॉट द ओनली एग्जाम्पल वी हैव, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो सिखा के गए कि यू नो व्हाट यू शुड कंज्यूम दिस, इट्स गोना हेल्प यू, एग्जैक्टली वो साइंटिफिक जो है उसका मतलब हमें नहीं समझा पाए हूं बेशक, और उसके फायदे भी ना समझा पाए हूं, लेकिन अगर उन्होंने कोई चीज खाने के लिए बोला तो उसका डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा असर है हमारी बॉडी के लिए। और अगर आप लोगों ने भी अपराजिता या शंख पुष्पी या ब्लू बटरफ्लाई पी के बारे में सुना है या उसे देखा है या उसकी चाय पी है या उसकी कोई भी बेवरेज पी है या फिर आपने उसे बिकते हुए देखा है ऐसी कोई बेवरेज अपने पास की मार्केट में, तो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि या ये बहुत ही अच्छी चीज है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए. डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक. जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ. और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
11: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
12: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
11: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन और वो भी फ्री में.
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
13: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर अब वक्त हो गया है किस चीज का? वेल ऑफ कोर्स खबरों के बारे में बात करने का, खबरों की दुनिया की तरफ रुख करने का. क्या हो रहा है खबरों में, क्या हो रहा है? जी हाँ, क्या हो रहा है खबरों में, क्या हो रहा है

जी हाँ दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा था कि खबरों की तरफ रुख करने का वक्त हो गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट से। हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तेल टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला किए जाने की घटना सामने आई है। ब्रिटिश मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हमले के बाद टैंकर का इंजन रूम क्षतिग्रस्त हो गया और जहाज डिसेबल हो गया। यूके एमटीओ के टैंकर को टैंकर के कप्तान ने घटना की जानकारी दी। उनके अनुसार यह घटना ओमान के जल क्षेत्र में अल श्रिशा इलाके से करीब 16 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हुई। सोमवार शाम जारी बयान में यूके एमटीओ ने बताया कि तेल टैंकर के कप्तान ने जहाज के एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आने की सूचना दी। इसके चलते इंजन रूम को नुकसान पहुंचा और जहाज की आवाजाही रुक गई। हालांकि जहाज के चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और उनकी हालत सामान्य बताई गई है। इससे एक दिन पहले भी यूके एमटीओ ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही को लेकर जानकारी दी थी। यूके एमटीओ के मुताबिक पिछले 48 घंटे के दौरान इस समुद्री मार्ग पर व्यापारिक यातायात कम रहा है।

बड़ी खबरों के बारे में बात हो रही है। आग ने मंगलवार सुबह दिल्ली के लगभग सभी जिलों में अगले दो

ऑरेंज अलर्ट। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के कई जिलों में भी अगले कुछ घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जी हाँ, सो मौसम विभाग ने प्रभावित इलाकों के लोगों के से सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। लोगों को पेड़ों या कमजोर ढांचों के नीचे शरण लेने से बचने की सलाह दी गई है। और क्योंकि दिल्ली में मौसम खराब हो रहा है तो उसकी वजह से कुछ फ्लाइट्स पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं और आज या अगले 2-3 दिन के लिए आप ट्रैवल करने वाले हैं तो आप पहले ही उस चीज के बारे में जानकारी ले लें ताकि आपको किसी भी तरह का ट्रैवल हॉल्ट ना सहना पड़े। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और अमेरिका ने 47 साल बाद एक कंट्री को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश की सूची से हटा दिया है। लगता है डोनाल्ड ट्रंप की तिजोरी में पैसा पहुंच गया है। जी हाँ, सो अमेरिका ने 47 साल यानी 47 साल बाद सीरिया को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की सूची से हटा दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने बताया कि इस फैसले का मकसद सीरिया में विदेशी निवेश की राह आसान करना और देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था में फिर से शामिल करना है। सीरिया के हटने के बाद अमेरिका की सूची में केवल 3 देश बचे हैं, जो ईरान, उत्तर कोरिया और क्यूबा हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि यह फैसला सीरिया को आर्थिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने का रास्ता देगा। इसको लेकर पहली बार पिछले साल जुलाई में प्रस्ताव रखा गया था। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेंसेट ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम सीरिया में ज्यादा निवेश लाने में मदद करेगा, जिससे राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अलशरा के साथ भी संपर्क बढ़ाया है। अलशरा पहले में एक उग्रवादी संगठन के नेता रहे हैं और कभी अमेरिका ने उनके खिलाफ इनाम की घोषणा की थी। वह अलकायदा से जुड़े एक संगठन का नेतृत्व कर चुके हैं। गौरतलब है कि पिछले साल अमेरिका ने अहमद अलशरा के नेतृत्व वाले इस्लामी संगठन तहरीर अल शाम को अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा दिया। मैंने कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप की तिजोरी में पैसा पहुंच गया है, इसीलिए ये देश सूची से भी हट गया है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
6: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
5: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
6: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
7: दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों वहीं डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को नई धमकी, ऑटो सेक्टर पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही है। जी हाँ, यहाँ पर बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि ईरान के अलावा कनाडा के पीछे मिस्टर ट्रंप जो है वो लगे हुए हैं, और क्या है माजरा ये जरा जानते हैं। सो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाली कारों, ट्रकों और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% करने की धमकी दी है। ट्रंप ने सोमवार को कनाडा के ऑटो सेक्टर पर टैरिफ दोगुना करने की बात कही। ट्रंप का कहना है कि नया टैरिफ 1 जनवरी से लागू किया जाएगा।

ये धमकी ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड से जुड़ी बातचीत खत्म हो गई है और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कॉनी ने ट्रंप की ताजा टैरिफ धमकी को अप्रत्याशित नहीं बताया। उन्होंने ट्रंप पर कनाडा के ऑटो उद्योग को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कॉनी ने कहा कि अगर अमेरिका सही रवैये के साथ बातचीत की मेज पर लौटता है तो कनाडा भी वार्ता दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। पहले हुई वार्ता को लेकर कनाडाई अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका ने बातचीत के आखिरी चरण में ऐसी मांगे रखी जिन्हें स्वीकार करना संभव नहीं था। इनमें एक प्रावधान भी शामिल था जिसके तहत कनाडा किन देशों के साथ व्यापार समझौता कर सकता है उस पर सीमाएं लगाई जानी थी। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने इसके लिए कनाडा को जिम्मेदार ठहराया है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर ने सोमवार को सीएनबीसी से बातचीत में कहा कि कनाडा की ओर से अधिक मांगे रखी गई थी। जी हाँ, बेसिकली कि कंट्रोल करना चाहता है कनाडा को भी अमेरिका। बट कैन, मतलब कैन अमेरिका कंट्रोल कनाडा? मतलब वो 51st स्टेट कनाडा को बनाना चाहता है अपनी बहुत वक्त से। ये पहली बार नहीं है। ट्रंप जब पहले आए थे सत्ता में तो उन्होंने तब भी ये बात कही थी। अब बात ये है कि वो थोड़े दिन पहले ये भी कह रहे थे, एक दो दिन पहले उन्होंने कहा कि जो कनाडा है वो अमेरिका की 51st स्टेट बनना नहीं चाहता, लेकिन उसके सारे जो है वो अच्छे जो है इफेक्ट्स उसे चाहिए। मतलब उसको सारे जो है वो प्रोज चाहिए, लेकिन वो चीज, मतलब उसे 51st स्टेट बनना नहीं है। मतलब उसको फायदे चाहिए 51st स्टेट के, लेकिन उसे 51st स्टेट बनना नहीं है। जी आप ऐसे में यहाँ पर टैरिफ जो है वो लगाने की धमकी दे दी। तो कनाडा ने भी कह दिया कि सीधी सीधी बात है, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारी बिजली ही काट देंगे और तुम्हारे ऑलमोस्ट 2 मिलियन लोगों को कैंडल लाइट डिनर करना पड़ सकता है अगर तुम सीधा अच्छे से काम करना शुरू नहीं करते हो। अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो हम तुम्हारी बिजली ही काट देंगे। जी हाँ, सो कनाडा ने अब ये धमकी दे दी अमेरिका को। और अब मिस्टर ट्रंप का क्या जवाब होने वाला है, लेट्स सी। क्योंकि कैंडल लाइट डिनर रोज करवाना अमेरिका को, ये हर कोई नहीं कर सकता। बट कनाडा क्योंकि एकदम बाजू में लगता है तो इसके पास ये हथियार तो डेफिनेटली है। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और ये पैसिफिक में टेम्परेचर क्या बढ़ा, सुपर एल नीनो क्या आया, ऐसी ऐसी कंट्रीज गर्मी से परेशान होगी जहां इतनी गर्मी कभी हुई नहीं। वैसे तो यूरोपियन कंट्रीज सबसे ज्यादा परेशान रही हैं, लेकिन साउथ कोरिया और जापान भी इसमें पीछे नहीं है। मतलब इतना टेम्परेचर वहां पर बढ़ गया है कि लोगों को नए नए तरीके जो है वो अपने आप को ठंडा करने के लिए अपनाने पड़ रहे हैं। अब खुद को तो ठंडा करने के लिए लोग तरीके अपना ही रहे हैं, लेकिन अपने पेट्स को भी वो ठंडा रख पाए इसके लिए भी वो पूरा का पूरा इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर उन लोगों के साथ कंपनीज भी ये करने की कोशिश कर रही है। सो यहाँ पर जापान की एक कंपनी ने एक जैकेट बनाई है पेट्स के लिए, खासकर डॉग्स के लिए, जिसमें कि उनको इनबिल्ट फैन मिलेगा जो कि पूरी थ्रू आउट बॉडी जो है वो उस हवा को जो है वो पहुंचाएगा ताकि उनकी बॉडी जो है वो ठंडी रह सके। और खासकर एक आइस पैक भी मिलेगा इनबिल्ट जो कि एक्स्ट्रा कूलिंग जो है वो प्रोवाइड कर सके। जी हाँ, आपने सोचा होगा क्या बात है, मतलब हद हो गई है यार, मतलब गर्मी से निपटने के लिए जापान जाना होगा। लेकिन ये आप नहीं, आपके पेट सोच रहे होंगे। सो अगर मेरा ये प्रोग्राम आपके साथ आपके पेट भी सुन रहे हैं कहीं, तो दे विल बी लाइक ओके ओके, यू नो व्हाट, अगर मुझे ये जैकेट नहीं मिली देन आई एम गोना बाइट यू। जी हाँ, सो अपने पेट्स को मेरे प्रोग्राम से थोड़ा दूर रखिए, या फिर सुना दीजिए, या फिर उनको ये जैकेट ला दीजिए। आप लोग बोलोगे कहाँ से लेकर आए जैकेट, और यहाँ पर तो ठंडा, यहाँ गर्मी हो ही नहीं रही। निवेश शर्मा, तुम उल्टी से लाएं क्यों देती हो? वेल, हमारे यहाँ पे गर्मी नहीं हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा और ऐसी जगह है जहां पर गर्मी हो रही है। सो आपको मैं बता दूं, इसे डेवलप किया है टोक्यो बेस्ड एक क्लोदिंग कंपनी ने, और ये जैकेट जो है वो यूज करती है एक बैटरी पावर्ड फैन जो कि सर्कुलेट करता है एयर अराउंड द बॉडी विद एन आइस पैक एडेड फॉर एक्स्ट्रा कूलिंग। जी हाँ, जो कंपनी है वो कह रही है कि डिजाइन जो है वो डेवलप किया गया है एक वेटरनेरियन के द्वारा, जिन्होंने टारगेट किया है उन एरियाज को जहां पर मेजर ब्लड वेसल्स जो है वो रन करते हैं, और जहां पर गर्मी जो है वो आपके डॉग्स को या फिर आपके पेट्स को ज्यादा लगती है। जी हाँ, यहाँ पर अब आप लोग बोलोगे कि इतनी क्या गर्मी हो गई है जापान में कि मतलब ऐसी सी सिचुएशन आ गई है। वेल, जापान में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है टेम्परेचर, लिटरली। आप लोग बोलोगे हैं 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया, वेल ये जो कंट्रीज है ना, इनको इतनी गर्मी की आदत नहीं है। जी हाँ, सो ऐसे में 40 डिग्री सेल्सियस अगर इंडियन लोगों के लिए जाएगा तो दिल भी लगेगा अरे ये कोई गर्मी है, बट वही टेम्परेचर अगर साउथ कोरिया और साथ में जापान के लिए चला जाएगा या आजू बाजू की कंट्रीज के लिए चला जाएगा जो कि नॉर्मली बहुत ज्यादा ठंडी रहती हैं, तो उनको कहां निपटना आएगा उस गर्मी से। जी हाँ, सो अब जापान के लोगों के साथ उनके पेट्स भी एकदम ठंडे ठंडे रह पाएंगे, क्योंकि ये जबरदस्ती इन्वेंशन जो है वो उन्हें कमाल की ठंडक जो है वो प्रोवाइड करने वाली है। और मैं ऐसे सोच रही थी कि ये जैकेट तो आई थिंक इंसानों के पास भी होनी चाहिए। अब ऑफकोर्स उन्होंने ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की है, जापान ने इंसानों के लिए भी ऐसा कुछ बनाया है जो कि उन्होंने जानवरों के लिए बनाया है, जिसके बारे में मैं कुछ वक्त पहले बात कर चुकी हूँ। एग्जैक्टली सेम नहीं है, पर कुछ वैसा ही है कि आपको ठंडक जो है वो मिल सके। इनफैक्ट नॉट जस्ट जापान, चाइना में भी ऐसी जैकेट्स या ऐसा कुछ कॉस्ट्यूम जो है वो बनाने की कोशिश की गई है ताकि लोग वहां पर गर्मी में ठंडे रह सके। जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे क्या बात है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों और इसी के साथ वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का। आई होप आप इस सेगमेंट का वेट कर रहे होंगे उतना ही जितना ये मैं कर रही थी। वेल हम सब करते हैं, क्योंकि ये हमारा फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि इसमें पुराने गाने, खूबसूरत गाने, वो किस्से, वो तराने सब आपको मिलने वाला है। मतलब ऐसे लिरिक्स जिनको सुन के आपको ऐसा लगता है वाह क्या लिखा है, ऐसी धुन जिसको सुन के आपको ऐसा लगता है अगर धुन हो तो ऐसी, और गायकी ऐसी कि प्रो मैक्स लेवल भी छोटा पड़ जाए। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गाने के साथ, और ये गाना है किसी की तारीफ पर। और अगर आप ऐसी तारीफ कर दोगे किसी महिला की, तो फिर आपकी बात जो है वो बन जाएगी, अगर आप उसे अडोर करते हो और अगर आप उसे पटाना चाहते हो। तो सीधी सी बात है, ये गाना गा दीजिए, देखिए क्या जबरदस्त काम करता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह गाते तो गाइएगा मत, सिर्फ ऐसे भेज दीजिएगा, बिकॉज गा के फिर गड़बड़ हो जाएगी। जी इसी के साथ सुनते हैं इस गाने को और फिर करते हैं बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, ये खूबसूरत सा गाना जो आपने सुना वो शमी कपूर का है। जी हाँ, प्रिंस मूवी का ये गाना रफी साहब की आवाज में किसको पसंद नहीं होगा, और खासकर उन महिलाओं को तो जरूर पसंद होगा जिनकी तारीफ में कोई इसे कहेगा, मतलब गाएगा अगर अच्छा गाता है और भेजेगा अगर अच्छा लिखता है। तो बात यह है कि एक चीज है जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है जो मैंने नोटिस की और मुझे लगा मेरे लिसनर्स के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। आपको पता है जब भी हिंदी फिल्म सिनेमा की बात होती है, जब भी हिंदी सिनेमा की बात होती है, तो दो सितारे जो है वो सबसे ज्यादा चमकते हुए नजर आते हैं। वेल ऑफकोर्स और भी बड़े बड़े सितारे हैं लाइक दिलीप साहब, राज कपूर, लेकिन जो अदाओं वाली बात होती है ना, मतलब एक यूनिक अदा, मतलब किसी ने अपना सिग्नेचर स्टाइल क्रिएट कर दिया, तो उसमें सिर्फ दो ही सितारे हैं। सबसे पहले शमी कपूर साहब और दूसरे देवानंद साहब। मतलब देवानंद साहब पहले और शमी कपूर साहब बाद में, लेकिन दोनों ने ही अपनी अलग अलग चीजें जो है, अलग अलग सिग्नेचर स्टाइल, एक्टिंग स्टाइल जो है वो क्रिएट किया। दोनों की ही अदाएं बिल्कुल अलग थी, लेकिन दोनों की एक और चीज जो है वो सेम थी। दोनों ने प्यार में पड़ के शादी करने का तरीका एक जैसा ही चुना। जी हाँ, आप लोग बोलोगे अच्छा वो कैसे? वेल, अगर आपको नहीं पता है तो शमी कपूर साहब ने शादी की थी गीता बाली जी से। लेकिन क्या आपको पता है कि गीता बाली से वो इतना प्यार में पड़ गए थे कि उन्हें लगा कि घर वालों से बात करने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ सीधा सीधा मंदिर में जाके शादी कर लेता हूँ। एंड दैट्स व्हाट ही डिड, ही वेंट टू टेम्पल। जी हाँ, वो शादी करने के लिए गए मंदिर में, अब गीता बाली को लेकर गए, उन्होंने शादी कर ली, और उसके बाद जो है, उसके बाद अपने भाई को यानी कि राज कपूर को और अपने पिता पृथ्वी राज कपूर को कॉल करके बोला कि पिताजी मैंने शादी कर ली है। जी हाँ, अब पृथ्वी राज कपूर भी क्या ही कहते सामने से, वो कहते हैं अच्छा कर ली है तो अब ले आओ उसे घर पे। जी हाँ, इसी के साथ मतलब सबको ऐसा लगेगा कि ओ थोड़ा ड्रामेटिक रिएक्शन हुआ होगा, बट नहीं, इट वाजंट लाइक दैट। इनफैक्ट देवानंद साहब ने भी कुछ ऐसा ही फनी किया था अपनी पर्सनल लाइफ के फ्रंट पे। जी हाँ, और दोनों ही अदाओं में तो यूनिक थे ही, लेकिन पर्सनल लाइफ में कारनामों में भी यूनिक थे। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना मैं आपको सुनाऊंगी, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि देवानंद साहब ने क्या किया था। जी हाँ, गाना जो है वो मेरी तरफ से नहीं है, वो है एक फरमाइशी गीत, बट कहना पड़ेगा कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा गीत है। गाने का नाम है ये रातें ये मौसम, और इस गाने की फरमाइश जो है वो की गई है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर प्रेमा आंटी जी की तरफ से। जी हाँ, गाना बहुत ही खूबसूरत है, गाने का नाम है ये रातें ये मौसम। दिल्ली का ठग मूवी का ये गाना है, 1958 में आई थी, किशोर दा का ये गाना है और आशा जी ने इसे गाया है, नूतन है उनके साथ उसमें। सो थैंक यू सो मच प्रेमा आंटी, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइश करने के लिए। एंड आई हैव टू से कि सच में ये गाना सुनकर ऐसा ही मन करता है कि किसी नदी के किनारे जो है जाकर बैठ जाएं, ये रातें ये मौसम, और अच्छा सा मौसम हो, नदी का किनारा हो और ये गाना हो, राइट? सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका ये

जी हाँ दोस्तों, ये खूबसूरत सा गाना जैसे मैंने कहा कि रात हो, खूबसूरत मौसम हो और नदी का किनारा हो और ये गाना हो, भाई इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और ऑफ कोर्स अगर किसी का साथ हो तो और चार चांद लग जाएंगे। जी हाँ, इसी के साथ मैं आपको बता रही थी कि कैसे शमी कपूर और देवानंद साहब दो ऐसे सितारे हुए हैं हिंदी फिल्म जगत में जिन्होंने अपना सिग्नेचर एक्टिंग स्टाइल क्रिएट किया है। मतलब आज भी अगर आपको देवानंद साहब और शमी कपूर जैसी एक्टिंग नहीं होगी तो वो एक पर्टिकुलर टाइप है जो एक्ट आपको करना पड़ेगा, जैसी एक्टिंग आपको करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि कैसे दोनों ही बड़े दिलचस्प इंसान थे ऑन द कैमरा, लेकिन ऑफ द कैमरा भी वो दोनों बहुत ही ज्यादा दिलचस्प थे। मैंने आपको बताया शमी कपूर साहब ने खुद ही गीता बाली जी से शादी कर ली थी मंदिर में जाके, और फिर उसके बाद अपने खानदान वालों को कॉल किया था कि पापा मैंने शादी कर ली है, तो पापा भी क्या कहेंगे सामने से, वो कहते हैं अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया, तो उसे घर ले आओ अब। लेकिन यहाँ पर देवानंद साहब वाली स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अपेरेंटली कल्पना कार्तिक के साथ उन्होंने शादी की थी। जी हाँ, कल्पना कार्तिक के साथ उनका जो लव सीन है वो अभी कुछ दिन ही हुए थे चलते हुए, और फिर उन्हें लग गया दोनों को कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन उन्हें एक कितनी जल्दी लगा वो एक बहुत ही फनी सिचुएशन है। जी हाँ, सो कल्पना कार्तिक और देवानंद साहब दोनों ही शूटिंग कर रहे थे अपनी एक पिक्चर की, और उनका एक सीन शूट होता है और उसके बीच में एक ब्रेक आता है। जी हाँ, शूटिंग के बाद जो बीच में एक ब्रेक आता है उसमें कल्पना कार्तिक को लेकर देवानंद साहब वहां से जाते हैं और चुपचाप किसी को बिना बताए शादी कर लेते हैं, मतलब सीन के बीच में, इन बिटवीन द शॉट्स। जी हाँ, और वहां पर शादी करके वो आ जाते हैं, किसी को नहीं बताते कि उन्होंने क्या किया है, किसी को ये भी नहीं बताते कि वो दोनों साथ में गए थे। लेकिन जब जो कॉन्टिन्यूटी चेक करने वाला जो बंदा होता है, क्योंकि उसे फिर से शूट करना था, उसी की कॉन्टिन्यूटी में आगे एक सीन आना था जो पहले सीन वो शूट करके गए थे ब्रेक से पहले, जब वो देखते हैं कि कल्पना कार्तिक जो है वो सब कुछ एकदम सेम कर रही है, इट्स जस्ट दैट कि एक चेंज है उनके अटायर में नहीं बल्कि उनकी उंगली पर, उनकी उंगली में एक अंगूठी है जो कि उनकी उंगली में पहले नहीं थी जब पहले सीन हुआ था। बस फिर क्या है, फिर सबने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि ओहो हो, ये बंदा तो कर चुका है अपना काम, मतलब ये शादी की अंगूठी है। लेकिन वहां पर देवानंद साहब ने सबको कह दिया कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको, जिस बंदे को पता चल गया था कि कॉन्टिन्यूटी के चक्कर में मैंने ये अंगूठी स्पॉट कर ली है, उसको कह दिया कि अच्छा ठीक है तुमको पता चल भी गया तो किसी को बताना मत। ऑफकोर्स बाद में धीरे धीरे बात खुल गई, लेकिन उस वक्त के लिए देवानंद साहब ने कह दिया कि देखो हम ज्यादा लाइमलाइट नहीं जाते हैं यहाँ पे, हमने कर ली है शादी, पर दैट डजंट मीन कि तुमको बहुत ज्यादा हल्ला डालने की जरूरत है, रहने देना। जी हाँ, मतलब क्या है, दोनों इंसान, दोनों ने शादी इतने मजेदार तरीके से, ना वो यू नो ढोल नगाड़े ना कुछ, अगर प्यार है तो बस शादी कर लो, ऐसे ही कर लो, क्या बात है। मैंने कहा ना ऑन द कैमरा तो शख्सियत वो दोनों ही बहुत दिलचस्प थे ही, लेकिन ऑफ द कैमरा भी, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ के इतने बड़े बड़े डिसीजंस ऐसे चुटकी में ले डाले, क्या बात है। जी ऐसे के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks. And we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों अब मैं एक फरमाइशी गीत प्ले करने वाली हूँ। गाने का नाम है अगर बेवफा तुझको, रफी साहब का गाया हुआ गीत है और इसकी फरमाइश की है हमारे बहुत ही खास लिसनर विशाल जी ने। जी हाँ, गाना जो है जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि कुछ थोड़ा सेंटी सेंटी वाइब वाला लग रहा है, लेकिन मैं एक चीज सोच रही थी कि कितने जबरदस्त सिंगर ये रहे होंगे। मतलब अगर आप ये गाना सुनोगे और आप रफी साहब की आवाज को सुनोगे तो आपको लगेगा कि बेवफाई तो रफी साहब के साथ ही हुई है और तभी उनकी आवाज में वो दर्द आ रहा है, लेकिन ऐसा था ही नहीं। मतलब रफी साहब एक बहुत ही खुशमिजाज इंसान के साथ थे, उनके साथ कौन बेवफाई करेगा, लेकिन वो दर्द लेकर आना अपनी आवाज में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, क्या बात है। मतलब वो दर्द आपकी जिंदगी में नहीं है लेकिन आपको अपनी आवाज में लाना है क्योंकि आप यहाँ गाना गा रहे हो किसी और के लिए। कितनी रिमार्केबल चीज है। आप हैप्पी फील नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको हैप्पी फील करना है क्योंकि आप कुछ अच्छा और फनी गाने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज ऑल्सो सो रिमार्केबल। सो कहना कि सिंगर्स जो है वो कम काम करते हैं या अच्छा काम करते हैं, ये बहुत कम होगी, ये बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि सिंगर्स जो करते थे अपनी जिंदगी में कुछ और चलते हुए भी वो अपनी आवाज में लेकर आना, वो खुशी, वो नटखटपन या वो अहलड़पन, जी हाँ, या फिर वो दर्द या वो रोमांस जो कि आप उस वक्त फील भी नहीं कर रहे हो, बट स्टिल लाइक दैट्स सो अमेजिंग, राइट। थैंक यू सो मच विशाल जी हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशों के लिए। ये रहा आपका ये गाना, थोड़ा सा सेंटी बट ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए।
3: बेवफा तुझको

0: rough, dry hair, they need more hype.
1: जी दोस्तों, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल, तो मस्ती भी होगी कल। तो आज आपको क्या करना है, वेल, शाम का लुत्फ उठाना है, मजा लेना है। खूबसूरत सी शाम है भाई, बाहर निकलिए, मजे से चांद को देखिए, आसमान को देखिए, और कुछ अच्छा सा देखिए और कुछ अच्छा सा करिए जो आपको करने का मन करता है बाहर निकलकर। दैट्स अबाउट इट। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਵੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ।
1: ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸਟਾਪ ਰੈਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਓਨਿੰਗ ਵਨ ਔਰ ਮੇਬੀ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਲੁਕਿੰਗ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Yaar, saag mein kuch dam nahi hai. Bilkul maza nahi aaya.
3: Kisi din ghar aana, asli desi ghee mein saag bana kar khilaunga tumhe.
2: Kahan yaar, aaj kal asli desi ghee milte kahan hai?
3: Kis duniya mein ho bhai? Quality food service mein triple refined pure desi ghee milte hain. Australia mein hi bante hain 100% pure cream se, 99.9% pure milk fat se. Aur to aur, har mausam mein uplabdh rehne ke saath saath high quality packaging mein bhi aate hain.
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
6: Hi, this is Amitabh Bachchan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: Hi, this is Salman Khan.
10: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
12: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
13: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani
14: से। To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
15: गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
16: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
15: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो, बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन

0: काल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ?
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है?

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में दशक की सबसे तेज बारिश। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड के इलाकों में इस समय अगस्त महीने की सबसे भीषण बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 70,000 से ज्यादा बार आकाशीय बिजली चमकने और भारी तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसी के साथ कंगारू प्वाइंट ब्रिज पर रंग बिरंगी रोशनी का खास उत्सव। ब्रिस्बेन में आज यानी 25 अगस्त को ऑस्ट्रेलियन साउथ सी आइसलैंड रिकॉग्निशन डे के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल द्वारा प्रसिद्ध कंगारू प्वाइंट ब्रिज को नीले, हरे और पीले रंगों की लाइटों से सजाया गया है। वहीं ब्रिस्बेन ओलंपिक 2032 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेज गति। जी हां, 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक खेलों की तैयारियों के तहत क्वींसलैंड सरकार ने आज शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था यानी कि मेट्रो लाइन को अपग्रेड करने के लिए एक नए बजट ड्राफ्ट पर मंजूरी दी है ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके। इसी के साथ ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर नई बायोमेट्रिक सुविधा की शुरुआत। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आज यात्रियों की सुविधा के लिए पूरी तरह से डिजिटल और नो टच बायोमेट्रिक बोर्डिंग गेट्स का टेस्ट रन शुरू कर दिया है। वहीं दक्षिण पूर्व क्वींसलैंड में समुद्री तटीय अलर्ट। ब्रिस्बेन के मशहूर समुद्र तटों गोल्ड कोस्ट और सनशाइन कोस्ट के लिए स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और तेज तूफानी हवाओं की वजह से पर्यटक और सर्फर्स को समुद्र की गहराई में जाने से रोक दिया गया है। वहीं ब्रिस्बेन में लोकल कम्युनिटी ग्रीन इनिशिएटिव शहर को और ज्यादा हरित बनाने के लिए ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने आज से प्लांट फॉर द फ्यूचर ड्राइव शुरू किया है, जिसके तहत अगले 2 हफ्तों में स्थानीय पार्कों और रिहायशी इलाकों में 10,000 से अधिक देसी पौधे लगाए जाएंगे। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश और पानी का भराव। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में मंगलवार तड़के से जारी झमाझम बारिश ने मौसम सुहावना तो बना दिया है, लेकिन सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वहीं साइबर सिक्योरिटी पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश के 5 बड़े राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और

0: साइबर आतंकवाद से जुड़े मामलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। वहीं आईआईटी दिल्ली में छात्रों की मांग पर 5 सदस्यीय कमेटी आईआईटी दिल्ली परिसर में, हाल ही में एक छात्र की दुखद मृत्यु के बाद वहां के स्टूडेंट्स ने पढ़ाई के दबाव और मेंटल हेल्थ को लेकर अपना विरोध दर्ज किया है। वहीं रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी का स्पेशल क्लीनिंग ड्राइव, भारतीय रेलवे ने देश भर के स्टेशनों पर साफ और सुरक्षित पीने का पानी मुहैया कराने के लिए एक देशव्यापी स्पेशल सफाई अभियान की शुरुआत की है। वहीं बिहार सरकार का परीक्षा लीक रोकने के लिए नया मास्टर प्लान, प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूली बोर्डर्स में पेपर लीक की घटनाओं को हमेशा के लिए खत्म करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। वहीं राजस्थान में देश का पहला हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक तैयार, भारतीय रेलवे राजस्थान के नावा जयपुर के पास में भारत का पहला डेडिकेटेड हाई स्पीड ट्रेन टेस्टिंग ट्रैक लगभग तैयार कर चुका है। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच आर्थिक तनाव बढ़ा, अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ा दिया है। वाशिंगटन ने नए कड़े प्रतिबंधों की चेतावनी देते हुए बाकी देशों से ईरान के साथ व्यापार बंद करने को कहा है। वहीं रूस में भारतीय विदेश मंत्री की अहम बैठक, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय मॉस्को के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री से मुलाकात की है। वहीं दक्षिण चीन और वियतनाम में तूफान नारा का कहर, वहीं दक्षिण पूर्वी एशिया में आए भयानक समुद्री तूफान नारी की वजह से दक्षिण चीन और उत्तरी वियतनाम के इलाकों में भारी तबाही हुई है। इसके साथ अमेरिका में H-1B वीजा शुल्क विवाद, अमेरिका में H-1B वीजा फीस को लेकर सरकार और कोर्ट के बीच मामला गर्मा गया है। सरकार द्वारा वीजा धारकों पर भारी शुल्क लगाने के प्रस्ताव को कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद ट्रंप प्रशासन लगातार वीजा नियमों को कड़ा बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। वहीं टेक दुनिया में AI मेमोरी चिप्स की भारी कमी, जी हां, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की बढ़ती मांग के कारण दुनिया भर में मेमोरी चिप्स की भारी किल्लत महसूस की जा रही है। चिप्स महंगे होने की वजह से टेक कंपनियों का कहना है कि आने वाले दिनों में स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी की कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं यूक्रेन ने सर्दियों से पहले एयर डिफेंस बैकअप मांगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने सहयोगी देशों से तत्काल एयर डिफेंस सुरक्षा पैकेज भेजने की अपील कर रहे हैं। वहीं अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले भारत श्रीलंका टेस्ट सीरीज में भारत की मजबूत पकड़, कोलंबो में खेले जा रहे भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली है। वहीं भारतीय बैडमिंटन की त्रिशा गायत्री जोड़ी रैंकिंग में टॉप पर, भारत की महिला युगल जोड़ी त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद ने BWF वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में जबरदस्त 12 स्थानों की उच्च छलांग लगाई है। वहीं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक कार्रवाई, इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपने तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया है। इसके साथ पूर्व कप्तानों ने की इमरान खान के इलाज की मांग, दुनिया भर के 22 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों जिनमें भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव भी शामिल हैं, ने पाकिस्तान के सरकार को एक संयुक्त पत्र लिखकर पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को बेहतर मेडिकल सुविधाएं देने की दी जाने की अपील की है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107।
1: Better together. Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2000।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 एम ते जी आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड की चकाचौंध तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ सालों विच खेतरी भाषावां विच बनिया कई फिल्मां ने अंतरराष्ट्रीय मंचां ते भारत दा नाम रोशन कीता। BFTA कांस वैनस ते ऑस्कर वर्गे बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस विच भारतीय फिल्मां ने अपनी स्टोरी टैलिंग संवेदनशीलता नाल दुनिया नूं प्रभावित कीता हैगा। तां मैं सोचा कि क्यों ना तुहानूं उन्हां फिल्मां बारे दसां जिन्हां ने विदेश विच खूब वाहवाही वटोरी हैगी है। शायद बहुतियां बारे तुहानूं पता होना, बहुतियां बारे नहीं पता होना क्योंकि अदर लैंग्वेज दे विच हैगियां, तां अदर लैंग्वेज जिहड़ी आउंदी हैगी है तां उस बारे सानूं शॉर्ट मूवीज बारे ज्यादा पता नहीं हुंदा। तां चल मैं तुहानूं दस्सदी हां, ते जे तुहानूं समझ आउंदी होई तां जरूर देखियो क्योंकि इह फिल्मां बहुत ज्यादा वधिया है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 844-838-1360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.

0: ताल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।
1: Diamond.

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश चौलक दिना उससे बने हुए। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे विच। वो फिल्म का नाम है मसान। नीरज गायवान दी जैप्यू फिल्म वाराणसी विच दो कहानियां देवी जिस जो रिचा चड्डा बने से ते दीपक जो विकी कौशल बने से दी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रोमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उथे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्डा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग की थी है। विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

0: डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: मोटा सा

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: Honey, ye tum kahan le ja rahi ho? Ye grocery pass wale shop se le sakte hai na?
2: Yes, baby, but no compromise with quality and health. Hum jayenge sirf MC's Indian and Island Food.
1: Aisa kya khas hai wahan?
2: Sab kuch. Quality spices, lentils, rice, flour aur frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane ke best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. Aur fresh local produce bhi rakhte hain. Saath hi kitchenware and disposable plates ki large range. किसी भी फंक्शन के लिए.
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs.
4: Priya, next month mama ka birthday. Soch rahi hoon unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge.
5: Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
4: Acha? Wo kya?
5: Ab tum ghar baithe New Zealand ya Fiji mein bhi money bhej sakti ho Lotus foreign exchange ki help se online aur wo bhi free mein.
4: Lekin mama ke liye money lene kahin door jana possible nahi hoga.
5: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट.
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896. दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.
7: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270 35. रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003.
8: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलोंगाबा. ओपन डेली फ्रॉम 9 AM. टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
9: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है. मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है. स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं. prompt personalized and professional service ke liye obligation free appointment free of charge ring kare Prakash Menon ko phone 3630-5438 3630-5438 ya mobile 0415-952-660 0415-952-660

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल. ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360. ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन

पॉल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452 584 926। ग्रैंड भजन नाइट।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स। पर लड़की किसी में नहीं मिलती है, ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: suku, suku.
1: अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेद

हरे कृष्णा। प्रिय श्रोतागण, आज के इस वेदवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इस नंद किशोर दास का अभिवंदन। इसी महीने की 28 तारीख को बलराम जयंती का उत्सव मनाया जाएगा और उसी उपलक्ष में पिछले सप्ते हमने आपकी सेवा में भगवान श्री बलराम के विषय में कुछ कथा प्रस्तुत किए थे। संक्षेप में जो कथा प्रसंग था वो इस प्रकार था कि भगवान श्री बलराम कौरवों और पांडवों के मध्य में कुरुक्षेत्र भूमि पर जो युद्ध होने वाला था उस युद्ध में भाग लेने की उनकी बिल्कुल मंशा नहीं थी। इसी कारण वो तीर्थ यात्रा पर निकल चुके थे। वे पारिवारिक झगड़ा के बीच में नहीं पड़ना चाहते थे। भगवान के इस जगत में आने का मुख्य उद्देश्य चार होता है, अधर्म का विनाश, धर्म की स्थापना, दुष्टों का विनाश और संत पुरुषों की रक्षा। युद्ध, विनाश, हिंसा ये ना चाहते हुए भी धर्म की स्थापना के हेतु से कभी कभी इनका उपयोग किया जाता है। और जब पांडवों और कौरवों के मध्य में ये युद्ध की चर्चा हो रही थी उस समय कृष्णा ने भी कहा था कि वे युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, वो स्वयं युद्ध नहीं करेंगे, परंतु वे अर्जुन का रथ चला सकते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने मगध के राजा जरासंध जैसे कई दुष्टों के साथ युद्ध किया था। उन युद्ध में उन्होंने शस्त्र भी उठाए थे, परंतु कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और बलराम ने भी इनकार करके वहां से प्रस्थान कर दिए तीर्थ करने के लिए। तो श्री कृष्ण और बलराम दोनों भगवान होते हुए और दोनों का इस जगत में आने का हेतु अधर्म को विनाश करने का हो तो कोई पूछ सकता है कि क्यों इस युद्ध में वे अस्त्र शस्त्र से युद्ध नहीं करना चाहते थे। बहुत प्रयास भी किया गया था कि ये युद्ध ना हो, और फिर भी जब युद्ध निश्चित हुआ तो बलराम चले गए युद्ध में भाग ना लिए और कृष्ण अर्जुन के साथ उन्हीं के रथ के सारथी बन गए ताकि उन्हें स्वयं कोई अस्त्र शस्त्र का उपयोग ना करना पड़े। इस संदर्भ में हमें यह जानना आवश्यक है

राम का भी इस युद्ध में भाग न लेने का अर्थ ये नहीं कि वे धर्म स्थापना से अपना मुंह मोड़ लेंगे। जब युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा धर्म की स्थापना करवा रहे थे, उसी समय अन्य और स्थानों में धर्म स्थापना के इस लक्ष्य को भगवान श्री बलराम ने निभाया। और हमें यह भी याद रहे कि धर्म की स्थापना के भी कई अंग होते हैं, केवल युद्ध नहीं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म की स्थापना, धर्म क्या है वो भगवान स्थापित करते हैं। भगवत प्रणीतम, भगवान की प्राप्ति के हेतु भगवान के द्वारा संबोधित जो भी कार्य किए जाते हैं उसी को धर्म कहते हैं। अर्थात जिस कार्य में भगवत प्राप्ति का हेतु न हो वो तो अंत में अधर्म ही होता है। जिस प्रकार कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य के विषय में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, उसी प्रकार धर्म के हेतु दिव्य ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। तो धर्म की स्थापना के हेतु सबसे पहला अंग है ये दिव्य ज्ञान। यदि हम समाज को दिव्य ज्ञान में शिक्षित न करेंगे तो धर्म स्थापित होने की तो संभावना ही नहीं है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पहला अंग जो है दिव्य ज्ञान, उसे हमें प्रामाणिक गुरु से प्राप्त करना होगा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक तत्वदर्शी गुरु के पास जाना होगा। तो धर्म स्थापन का यह सबसे प्रथम अंग है दिव्य ज्ञान, जिसे हमें प्रामाणिक गुरु से प्राप्त करना होता है। तो शास्त्र में प्रमाण मिलता है कि भगवान श्री बलराम, जो श्री कृष्ण भगवान के सबसे पहले विस्तार हुए, वही आदि गुरु है। और जिसे हम गुरु तत्व कहते हैं वही बलराम है। गुरु हमें दो प्रकार से शिक्षित करते हैं, एक दिव्य ज्ञान से और दूसरा अपने आचरण से। जब किसी को सचमुच में दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो दिव्य ज्ञान उस व्यक्ति के कार्यों में प्रदर्शित होता है। इस जगत का ज्ञान या इस शरीर के संबंधित जो ज्ञान है उसे दिव्य ज्ञान नहीं कहते, क्योंकि ये शरीर और इस जगत की वस्तुएं दिव्य नहीं है। यहां इस जगत में यदि कुछ दिव्य है तो वो है ये जीवात्मा, भगवान, भगवत नाम, भगवत सेवा। और वो कार्य जो जीवात्मा और भगवान को अपने वास्तविक स्वरूप में मिला सके। इसी जगत में सभी जीवात्माओं को बलराम जी से स्वयं सीख लेनी चाहिए कि भगवत समर्पित जीवन कैसा होना चाहिए। स्वयं भगवान के कई अवतार और विस्तार है, परंतु जो आदि स्वरूप है भगवान का, जो सभी और स्वरूपों के भी कारण है, उसे ब्रह्मा जी ने घोषित किया है कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण वो आदि पुरुष श्री कृष्ण है और उनके सबसे पहले विस्तार बलराम जी है। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहार द्वितीय देह श्री बलराम। के सभी अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण है और बलराम उनका द्वितीय देह है, उनका दूसरा स्वरूप। तो प्रथम स्वरूप है कृष्ण और द्वितीय स्वरूप है बलराम। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के विस्तार दो प्रकार के होते हैं, एक है स्व अंश और दूसरा है विभिन्न अंश। स्व अंश भगवान के अवतार होते हैं जिनमें भगवान की सभी दिव्य शक्तियां होती है, वो भगवान से भिन्न नहीं होते। तो बलराम श्री कृष्ण के स्व अंश है, वो उनका ही विस्तार है और उनमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल देह के सिवाय। कृष्ण श्यामल रंग के हैं और बलराम स्वेद रंग के हैं, सफेद। तो ये है भगवान के स्वांश विस्तार। फिर भगवान के विभिन्न अंश विस्तार होते हैं, जो कि जीवात्मा है, जो स्वयं कभी भगवान नहीं बन सकते परंतु भगवान के अंश के रूप में सदा रहते हैं। उनमें भगवान जैसी शक्तियां होती है परंतु मात्रा बहुत कम, और अपने जीवन के लिए वे स्वयं भगवान कृष्ण और उनके स्वांश विस्तारों पर निर्भर होते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान और जीवात्मा दोनों नित्य है, दोनों सचेत है,
परंतु विभिन्न नित्य

एक नित्य पर निर्भर है, अर्थात जितने विभिन्न अंश है वो स्वांश के ऊपर निर्भर रहते हैं। यही वेद का कठन है। ये विभिन्न अंश या समस्त जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, हमेशा स्वांश के अधीन होते हैं। तो जितने विभिन्न अंश है वो स्वांश के अधीन होते हैं, अर्थात जितने जीवात्माएं हैं, जितने जीव जंतु हैं, जो भगवान के अंश है वो सदा भगवान पर ही निर्भर होते हैं। भगवान का अंश होने के कारण उनमें भी अल्प स्वतंत्रता है, परंतु पूर्ण स्वतंत्रता कभी नहीं होती है। जिस प्रकार एक राज्य में रहने वाले लोग स्वतंत्र होते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, परंतु राज्य के कानून के अंतर्गत कर सकते हैं, और यदि वो राज्य के कानून का उल्लंघन करना चाहे तो उसको स्वतंत्रता है, वो उल्लंघन भी कर सकते हैं, परंतु परिणाम भोगने के लिए उन्हें सज्ज होना पड़ेगा। कानून के उल्लंघन करने वालों को बंदी गृह में रखा जाता है। वहां भी स्वतंत्रता है, परंतु बहुत ही सीमित है, उतनी नहीं है जितनी जेल के बाहर है। जेल के बाहर और जेल के अंदर भी, दोनों जगह पर हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हम राज के अंदर रहते हैं और उसी राज का कानून अंदर या बाहर दोनों जगह पर हमारे ऊपर लागू होता है। तो विभिन्न नामश या जीवों में कुछ न कुछ थोड़ी सी स्वतंत्रता होती है, इंडिपेंडेंस होता है, परंतु वो इंडिपेंडेंस भी भगवान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हम पूरी तरह से कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। केवल भगवान के स्वरूप होते हैं जो उनके विस्तार होते हैं, जिसे हम स्वांश कहते हैं या अवतार कहते हैं, वे ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। परंतु वे स्वतंत्र होते हुए भी जो स्वयं भगवान है उनके सेवक बनकर रहते हैं। जिस प्रकार लक्ष्मण स्वयं भगवान के एक अवतार होते हुए भी भगवान श्री राम के सेवक बनकर आते हैं और कई प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं अपने पूज्य श्री राम को, तो उसी प्रकार बलराम भी श्री कृष्ण के एक स्वांश अवतार है, सर्वप्रथम अवतार है, और उसे गुरु तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि वे भी दिव्य ज्ञान के स्वरूप होते हुए अपने आप को स्वयं भगवान का सेवक मानते हुए कई प्रकार से श्री कृष्ण भगवान की सेवा में लगते हैं। दिव्य ज्ञान का अंतिम निचोड़ है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि हम सब भगवान के सेवक है, यही दिव्य ज्ञान है। और जब कोई ये समझ लेता है कि वे भगवान के सेवक है और इस समझ के अनुसार फिर वो सेवा में लगता है, उसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। वो अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित हो गया है, और ये सेवा निस्वार्थ भाव से करने से भगवत प्रेम उत्पन्न होता है। और जब सच्चा दिव्य प्रेम किसी को भगवान पर हो जाता है तो वो अपने प्रेमी के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाता है। वो स्वतंत्र नहीं होना चाहता है, वो सेवक बनकर सेवा में रहना चाहता है। जिस प्रकार लक्ष्मण एक क्षण के लिए भी राम से अलग नहीं रहना चाहते थे, तो बलराम जी अपने ही उदाहरण से, अपने ही कार्यों से ये उदाहरण स्थापित कर रहे हैं कि जिसके पास दिव्य ज्ञान हो जाता है, जिसका आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जो सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है, वो सेवा करना चाहेगा और सेवा के बिना अपने जीवन को निरर्थक समझेगा। जिस प्रकार गुरु अपने ही जीवन के उदाहरण से शिष्य को शिक्षा देता है, उसी प्रकार से भगवान श्री बलराम अपने ही उदाहरण से ये शिक्षा देते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, किस भाव से करनी चाहिए। हां, सेवा में हम उनकी बराबरी तो कर नहीं सकते, फिर भी भाव कैसा होना चाहिए, वो सब अपने उदाहरण से हमें शिक्षित करते हैं। श्री बलराम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कई रूप धारण करते हैं। छत्र पादुका शैया उपधान वसना आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासना, अर्थात वो कृष्ण की सेवा करने के लिए इन रूपों को धारण करते हैं। छत्र, पादुका, शैया, तकिया, वस्त्र, आराम करने का स्थान, निवास स्थान, यज्ञोपवित तथा सिंहासन, ये सब बलराम जी के अनेकों रूप है जिसके द्वारा वो श्री कृष्ण की सेवा करते हैं।
अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास जो छाता या छत्र उपयोग में लाए जाते हैं, उनकी पादुका, उनकी शैया, तकिये, वस्त्र, सिंहासन, निवास स्थान, ये सब बलराम जी से विस्तृत होते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण के संबंधित ये वस्तुएं भी पूजनीय है, क्योंकि वो बलराम के ही विस्तार है। एत मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्णेर शेषता पाणा शेष नाम धरे। इस बलराम को शेष भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण सेवा के परम शिखर को प्राप्त किया है। कृष्ण सेवा के लिए वे कई रूप धारण करते हैं, और इस प्रकार गुरु बन के भगवत सेवा कैसे की जाए, वो शिक्षण अपने ही चरित्र, अपने ही कार्य, अपने ही उदाहरण से देते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में श्री बलराम का ये शेष रूप है, जो कि विष्णु की सेवा में लगते हैं। पिछले वेदवाणी कार्यक्रम में हमने दर्शाया था किस प्रकार भगवान श्री बलराम रोमहर्षण सुत का वध करते हैं एक घास के तिनके से। इस घटना से, इस लीला से उन्होंने दर्शाया कि व्यास आसन पर बैठने के लिए कैसी योग्यता होनी चाहिए। जितना अधिक मात्रा में दिव्य ज्ञान गुरु के पास हो, उतना ही अधिक वो विनम्र रहेगा। यदि कोई धर्मपरायण होने का स्वांग रचते हैं और उनमें धर्मपरायण होने के गुण ना हो, तो भगवान भी उसे वध के योग्य समझते हैं। जो गुरु होने का ढोंग कर रहे हो, उसे आदि गुरु तत्व बलराम जी बिल्कुल सहन नहीं करते, क्योंकि आम जनता को सत्य मार्ग दर्शन देने के स्थान पर वे इन्हें भक्ति के मार्ग से भटका देते हैं। ऐसे कहलाए हुए गुरु के अनुचित उदाहरण को लोग धर्म समझने लगते हैं। ये बड़ी ही खतरनाक स्थिति हो जाती है। भगवान श्री बलराम के इस रोमहर्षण सुत का वध करने की लीला से ये भी सीख मिलती है कि जो गुरु होने का स्वांग रचते हैं, वो स्वयं अपने जीवन की आयु घटा देते हैं। उस पर आयुष्मान होने का वरदान भी काम नहीं करेगा। अनेकों आचार्यों द्वारा एक और बात भी इस घटना पर समझाई गई है। यूं तो भगवान स्वतंत्र होने के कारण जो चाहे कभी भी वो कर सकते हैं बिना किसी के अनुमति के, और क्योंकि वे पुण्य और पाप के श्रेणी से परे हैं, उनके कार्य दिव्य कहलाते हैं, और उनके कोई भी कार्य, चाहे किसी की हत्या करे या किसी को वरदान दे, ये दोनों का शुभ परिणाम ही होता है। इसी कारण भगवान के किसी भी कार्य को हम पाप नहीं कह सकते, क्योंकि वो पाप और पुण्य की श्रेणी में आता ही नहीं है। सामान्य लोग जब पाप करते हैं तो उन्हें दुख प्राप्त होता है, क्योंकि पाप का परिणाम अंततः दुख ही होता है। और ऐसे किए हुए पाप से बचने के लिए शास्त्र प्रायश्चित करने को कहते हैं, क्योंकि भगवान के कार्य पाप पुण्य की श्रेणी में आते ही नहीं है। इसी कारण उनके लिए किसी भी कार्य के कोई भी प्रायश्चित निर्धारित नहीं है। प्रायश्चित अधिकतर किए जाते हैं पाप से प्राप्त दुख से बचने के लिए, परंतु भगवान के लिए कोई भी कार्य के लिए प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जब उन्होंने रोमहर्षण सूत का वध किया, तब ऋषि मुनियों ने उनसे आग्रह की कि वे प्रायश्चित करें। इस दृष्टांत को लेकर कुछ लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि देखा, भगवान भी कर्म बंधन से बच नहीं सकते, भगवान होते हुए उनको प्रायश्चित करनी पड़ती है। परंतु ऐसा नहीं है। समस्या यह है कि सामान्य लोग ऐसा सोचने लगेंगे कि प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वयं प्रायश्चित नहीं की। सामान्य व्यक्ति भी यदि प्रायश्चित को त्याग दे तो उन्हें तो उनके पाप कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। जन समाज कहीं ऐसा ना सोचने लगे कि ब्राह्मण की हत्या करनी कोई बड़ी बात नहीं है और कोई घोर अपराध नहीं है। ये गलत धारणा न फैलने लगे, इस हेतु से ऋषि मुनियों ने भगवान श्री बलराम को कहा कि आप प्रायश्चित अपनाइए। फिर भी जब भगवान बलराम ने उनसे कहा कि आप स्वयं मुझे कहिए क्या प्रायश्चित मुझे करनी चाहिए, तो उन्होंने दो कार्य करने का प्रस्ताव रखा। पहला, दुष्ट बलवल दानव को मारना, उस असुर का संहार करना, और दूसरा,
कि एक वर्ष तक वे सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण करें, तो भगवान श्री बलराम ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार किया, बलवल को भी मार डाला और फिर वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े नैमिषारण्य से। एक वर्ष तक उन्होंने कहां भ्रमण किया वो सब भागवत पुराण में विस्तार से बतलाया गया है। नैमिषारण्य के बाद वे कौशिक नदी के तट पर गए। इस तीर्थ स्थान पर स्नान करने के पश्चात वे सरयू नदी की ओर चलने लगे और उस स्थान तक भी गए जहां सरयू नदी का स्रोत है। सरयू नदी के तट पर भ्रमण करते हुए वे धीरे धीरे प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में तीनों नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। वहां उन्होंने स्नान भी किया, स्थानीय मंदिरों में पूजा की, अपने पूर्वजों को तर्पण अर्पण किया और संत पुरुषों को भी दान दिया। वो सभी प्रकार की विधि अपनाई जो वैदिक शास्त्र में दी हुई है। कुछ समय बाद वे संत पुलह के आश्रम पर पहुंचे और वहां से वे गांधाकी और गोमती नदी की ओर गए। विपाशा नदी में स्नान किया और शोना नदी के तट पर आए। ये शोना नदी भारत के बिहार प्रोविंस में एक बहुत बड़ी नदी है। उस नदी में भी उन्होंने स्नान किया और अनेकों वैदिक क्रियाएं संपन्न की। अंत में वो गया भी आए जहां एक बहुत ही विख्यात विष्णु मंदिर है। यहां कई लोग जाते हैं श्राद्ध अर्पण करने के लिए। और फिर जहां गंगा मिलती है सागर से, बे ऑफ बंगाल में, वहां भी गए। इस स्थान को गंगा सागर ही कहा जाता है और जनवरी महीने के अंत में प्रतिवर्ष यहां पर संत पुरुषों की और पुण्यशाली लोगों की बड़ी सभा होती है। जिस प्रकार प्रयाग में माघ मेला लगता है, गंगा सागर में ये सब क्रियाएं समाप्त करने के बाद श्री बलराम महेंद्र पर्वत पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट परशुराम से हुई, जो भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार है। अर्थात ये दोनों अवतार के मध्य में भेंट हुई, जिस प्रकार से परशुराम अवतार की भेंट भगवान श्री राम से भी हुई थी। तत्पश्चात श्री बलराम दक्षिण भारत की ओर मुड़े। गोदावरी नदी के तट पर जितने भी तीर्थ स्थान थे वहां भी गए। भीमरथी नदी के तट पर स्वामी कार्तिकेय की जो मूर्ति है वे वहां भी गए। फिर महाराष्ट्र के एक प्रोविंस है शैलापुर, वहां गए। वहां से फिर द्रविड़ देश। दक्षिण भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है और इसको कहा गया है पंच द्रविड़। और उत्तर भारत को भी 5 भाग में विभाजित किया गया है और उन्हें कहते हैं पंच गौड़। इस युग के प्रमुख आचार्यगण, विशेष करके शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क, वे सब का आविर्भाव इन द्रविड़ देश में हुआ था। परंतु चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव पंच गौड़ में हुआ था, बंगाल में। तो दक्षिण भारत के द्रविड़ देश में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान वेंकटाचल है, जिसे बालाजी के नाम से भी जाया जाता है। बालाजी का दर्शन करने के बाद बलराम जी विष्णु कांची जाते हैं और फिर कावेरी के तट पर सभी जगह जाते हैं। विष्णु कांची का भ्रमण करते समय वे शिव कांची भी पहुंचे, कावेरी नदी में स्नान किया और फिर रंग क्षेत्र पहुंचे। कहा गया है कि सबसे बड़ा विष्णु मंदिर सारे जगत में रंग क्षेत्र है और वहां की जो श्रीमूर्ति है, विष्णु की श्रीमूर्ति, उसे रंगनाथ कहते हैं। एक वैसा ही मंदिर रंगनाथ का वृंदावन में भी है, परंतु रंग क्षेत्र जितना बड़ा नहीं है। तो रंग क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद बलराम जी मदुराई भी जाते हैं। मदुराई को कभी काल दक्षिण भारत का मथुरा कहते हैं। वहां से फिर वो सेतुबंध जाते हैं, वो स्थान जहां भगवान श्री रामचंद्र ने भारत से लंका का सेतु निर्माण किया था। इस स्थान पर बलराम ने स्थानीय ब्राह्मणों को 10,000 गौवें दान में दी। ऐसा कहा गया है वैदिक रीति के अनुसार कि जब एक धनवान व्यक्ति कोई भी तीर्थ स्थल पर जाता है तो वहां के स्थानीय पुरोहितों को घर देता है, गौवें देते हैं, वस्त्र आभूषण देते हैं। स्थानीय ब्राह्मणों को इस प्रकार से जीवन की आवश्यकताएं प्रदान की जाती थी, परंतु ये रीत आज इस कलयुग में बिगड़ चुकी है। जो धनवान लोग होते हैं वे ऐसे तीर्थ स्थान में जाने को
उनके पास कोई आकर्षण नहीं है। और जो ब्राह्मण पुरोहित ऐसे यात्रियों पर निर्भर रहते थे, वे भी अब ऐसे यात्रियों के प्रति अपना जो कर्तव्य है वो नहीं भी निभाते हैं। उन्हें कहा जाता था पांडा या पंडित, अर्थात वे बड़े ही विद्वान ब्राह्मण थे। और जो कोई भी यात्री वहां आते थे, उनको तीर्थ स्थान का महत्व इत्यादि समझाते थे। तो इस प्रकार यात्री और पुरोहित दोनों को लाभ होता था एक दूसरे से। भागवत पुराण के विवरण से यह स्पष्ट है कि जब भगवान श्री बलराम इन सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे, उस समय उन्होंने सभी वैदिक सिद्धांतों को निभाया। जब कभी भी हम तीर्थ यात्रा पर होते हैं तो महान आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है कि हमें 10 धाम अपराधों से बचे रहना चाहिए, और वे अपराध इस प्रकार है: उस गुरु का निरादर करना जो शिष्य को धाम का दर्शन करवाता है, दूसरा ऐसी सोच रखना कि भगवान का धाम शाश्वत नहीं है, अनित्य है, तीसरा अपराध धाम के किसी भी निवासियों के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा करना, और उन यात्रियों के प्रति भी जो वहां भ्रमण के लिए आते हैं, अर्थात ये सोचना कि ये लोग सामान्य लोग हैं, चौथा अपराध भगवत धाम में निवास करते हुए भौतिक कार्य करना, पांचवा धाम का उपयोग व्यक्तिगत आर्थिक उन्नति के लिए किया जाए, जैसे मूर्ति दिखलाकर पैसे बनाना या संकीर्तन से अपने लिए आर्थिक उन्नति करना, छठा अपराध है कि भगवान के तीर्थ स्थल को एक संसारिक देश का भाग समझना, या तो फिर ऐसा समझना कि भगवान के संबंधित तीर्थ स्थल देवताओं के संबंधित तीर्थ स्थल के बराबर है। पवित्र स्थल धाम कितना बड़ा है उसको नापने का प्रयास करना यह भी अपराध है। धाम में रहते हुए पाप कर्म करना अपराध है। वृंदावन धाम को नवद्वीप धाम से भिन्न समझना अपराध है। उन शास्त्रों की निंदा करना जो भगवान के तीर्थ स्थलों की महिमा बतलाते हैं। और दसवां अपराध है श्रद्धाहीन रहना और ऐसा सोचना कि धाम की जितनी महिमा बताई गई है वो सब काल्पनिक है। वास्तव में तीर्थ स्थलों में जो भी कुछ भक्ति में कार्य हम करते हैं वो 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। इसी कारण धाम में रहते हुए एक व्यक्ति बहुत ही तीव्र गति से प्रगति कर सकता है, यदि वो वहां रहे बिना कोई अपराध के। यदि हम वहां अपराध करते हैं तो उन अपराधों का परिणाम भी 1000 गुना ज्यादा होता है। इसी कारण सावधान रहने की सलाह दी जाती है कि पवित्र तीर्थ स्थलों पर कभी कोई अपराध ना हो जाए। तो सेतुबंध पर गौओं का दान देने के बाद श्री बलराम जी कृतमाला तथा ताम्रपर्णी नदियों की ओर गए। ये दोनों नदियां बड़ी ही पावन है और उन दोनों में श्री बलराम ने स्नान किया। वहां से वे मलय पर्वत गए। अगस्त्य मुनि यहां पर रहते थे और श्री बलराम जी उनको मिलने गए, उन्हें अपना सादर प्रणाम किया और फिर उस महामुनि का आशीर्वाद लेने के बाद वे इंडियन ओशन की ओर गए, जिस स्थान को आज केप कॉमरन कहते हैं। वहां दुर्गा देवी का एक भव्य मंदिर था जिन्हें वहां कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। ये कन्याकुमारी का मंदिर, भगवान श्री राम भी यहां आए थे, इसी कारण ऐसा समझा जाता है कि ये मंदिर कई लाखों वर्षों से आज भी है। वहां से श्री बलराम फाल्गुन तीर्थ की ओर गए। ये वो भव्य स्थान है जहां भगवान श्री विष्णु अपने अवतार अनंत के रूप में लेटे हुए हैं। फाल्गुन तीर्थ के बाद श्री बलराम पंचाप्सरा स्थान पर गए। नियम अनुसार वहां भी स्नान करने के बाद उन्होंने सभी वैदिक क्रियाओं को निभाया। ये विष्णु स्थान भी विख्यात है। फिर केप कॉमरिन से श्री बलराम केरला की ओर गए। ये केरला देश आज भी दक्षिण भारत में है। केरला के बाद वे आए गोकर्ण तीर्थ, जहां शिवजी को निरंतर पूजा जाता है। बलराम ने फिर
आर्या देवी के मंदिर का दर्शन किया जो चारों ओर जल से घिरा हुआ है। उस द्वीप के बाद वे शूरपारक स्थान पर गए। तापी, पयोशनी और निर्विंध्या नदी में स्नान करने के पश्चात वे दंडकारण्य वन में आए। ये वही दंडकारण्य वन है जहां भगवान श्री राम वनवास के समय पर निवास करते थे। बलराम ने फिर सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी नदी नर्मदा पर आए। नर्मदा के तट पर महिष्मतीपुरी नाम का एक तीर्थ स्थल था। इस स्थल में कार्य संपूर्ण करने के बाद बलराम जी वापस लौटे प्रभास तीर्थ पर, जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। प्रभास तीर्थ पर उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कुरुक्षेत्र पर अधिकांश सभी क्षत्रिय मारे गए। ये सुनकर कि संसार का बोझा कम हो गया है, बलराम को शांति मिली। श्री कृष्ण और बलराम दोनों इस धरती पर महत्वाकांक्षी क्षत्रिय राजा के द्वारा निर्मित सेनाओं का जो भार है उसे कम करने के लिए प्रकट हुए थे। भौतिक जीवन की यही रीत है कि जीवन की जितनी कम से कम आवश्यकता है उनमें संतुष्ट नहीं रहना। महत्वाकांक्षा होने के कारण लोगों की मांग बढ़ती है, उनकी अनैतिक इच्छाएं प्रकृति के कानून द्वारा या भगवान के कानून के द्वारा फिर रोकी जाती है। भूखमरी, युद्ध, बीमारियां और ऐसे अन्य विपत्तियों द्वारा। भगवान श्री बलराम ने उनसे ये भी सुना कि यद्यपि अधिकांश क्षत्रिय मारे गए हैं फिर भी ये युद्ध अभी चल रहा है। ये सुनते हुए ये युद्ध भूमि पर गए और उस दिन पहुंचे जब भीमसेन और दुर्योधन के मध्य में युद्ध हो रहा था। उन दोनों का शुभ चिंतक होने के कारण बलराम ने उन्हें रोकना चाहा, परंतु वे दोनों रुके नहीं। जब उस स्थान पर बलराम पहुंचे तो महाराज युधिष्ठिर और उनके अनुज नकुल, सहदेव और साथी श्री कृष्ण और अर्जुन, इन सभी ने तुरंत उनको सादर प्रणाम किया, परंतु कुछ बात नहीं की उन्होंने। उनका मौन रहने का कारण ये था कि बलराम कुछ हद तक दुर्योधन के प्रति स्नेह दर्शाते थे, क्योंकि दुर्योधन ने गदा युद्ध की कला बलराम जी से सीखी थी। जिस समय युद्ध हो रहा था तब युधिष्ठिर ने और अन्य भाइयों ने ये सोचा कि बलराम वहां आए होंगे दुर्योधन के पक्ष में कुछ कहने के लिए, इसी कारण वे चुप रहे। दुर्योधन और भीमसेन दोनों अत्यंत आतुर थे गदा युद्ध में और बड़े ही निपुणता के साथ एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे थे। ये स्पष्ट प्रतीत होता था कि वे दोनों एक दूसरे पर अत्यंत क्रोधित थे। श्री बलराम इस युद्ध को रोकना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने कहा कि हे मेरे प्रिय दुर्योधन और भीमसेन, मुझे पता है कि तुम दोनों बड़े योद्धा हो और संसार तुम लोगों को महावीर के नाम से जानते हैं, फिर भी मैं ये समझता हूं कि दुर्योधन से अधिक शारीरिक बल भीमसेन के पास है, परंतु दूसरी ओर गदा युद्ध की कला में दुर्योधन अधिक श्रेष्ठ है। इन दोनों बातों को मध्य रखते हुए मेरा ये मत है कि आप दोनों बराबर के हैं युद्ध की कला में, और इस परिस्थिति में कोई एक भी पराजित हो जाए इसकी संभावना बहुत कम है। इसी कारण मैं तुमसे याचना करता हूं कि युद्ध में अपना समय व्यर्थ मत करो। मेरी ये इच्छा है कि आप ये युद्ध बंद कर दो, यह आवश्यक नहीं है। तो बलराम के द्वारा ये अच्छी सलाह भीम और दुर्योधन को दी गई, ये उन दोनों के हित में थी, परंतु एक दूसरों के प्रति वे इतने क्रोधित थे कि वे केवल अपने जीवन भर की शत्रुता याद करके केवल एक दूसरों को मारने के लिए ही सोच सकते थे, और बलराम के इस उपदेश को उन्होंने कुछ महत्व नहीं दिया। एक दूसरे को आरोप और दुर्व्यवहार को स्मरण करते हुए वे पागल जैसे हो गए थे। तब श्री बलराम ने समझा कि उनकी क्या गति होने वाली है, और फिर इस मामले में उनको कोई इच्छा नहीं हुई आगे बढ़ने की। इसी कारण वहां रुकने के स्थान पर उन्होंने निश्चय किया कि वो द्वारका लौट जाएंगे।
तो द्वारका प्रस्थान करने के बाद जहां उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ, बलराम जी फिर से एक बार पवित्र तीर्थस्थल नैमिषारण्य आए, जहां पर सब संत पुरुष और ब्राह्मण उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। वे सब ने जान लिया था कि क्षत्रिय होते हुए भी भगवान श्री बलराम ने अब युद्ध करने को विराम दे दिया है, क्योंकि ब्राह्मण और संत पुरुष सदा शांति और समृद्धि चाहते हैं। इसी कारण वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन सभी ने बलराम जी को आलिंगन किया और उन्हें अनेकों प्रकार के यज्ञ करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं नैमिषारण्य में जो यज्ञ साधारण मनुष्य करते हैं वो बलराम जी के लिए आवश्यक नहीं था, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, वो दूसरों के द्वारा किए हुए यज्ञों के भोक्ता है। इसी कारण जब उन्होंने ये यज्ञ स्वयं किए तो उन्होंने केवल सामान्य मनुष्य को एकमात्र शिक्षा देने के लिए ऐसा किया कि उन्हें वेद के कठन के अनुसार जीवन जीना चाहिए। श्री बलराम स्वयं अनंत शेष है, आदि विष्णु है, सर्वशक्तिमान है, और यदि कोई सुबह शाम उनकी लीलाओं का स्मरण करता है तो वो निश्चित ही महान भक्त बनेगा। यही श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन है। तो याद रहे, बलराम पूर्णिमा इसी महीने की 28 तारीख को शुक्रवार को है और एक भव्य उत्सव मनाया जाएगा इस्कॉन ब्रिस्बन मंदिर पर, 8 Lee Road डेरा। ये कार्यक्रम शाम के 4:30 बजे से शुरू होगा और सभी को सादर आमंत्रण है। और सभी के लिए पूर्ण प्रसाद रूपी भोजन रहेगा। याद रहे, ये निमंत्रण सबके लिए है। हरे कृष्णा।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं, हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेद

हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होता है एंड विद पॉजिटिव एनर्जी। जी हाँ, सो आज के इस मॉर्निंग को हम बेहतरीन बनाएंगे बहुत प्यारे से ट्रैक के साथ। वेस्ट नहीं करेंगे टाइम क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, समय थोड़ा है। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन के साथ। इस ट्रैक को सुनकर सुनते रहिए रेडियो ब्रसवानी।

हाँ जी, सो ब्रिस्बेन वालों जरा वेदर को झांक लेते हैं। आज है 26 अगस्त यानी 26 अगस्त को ब्रिस्बेन में मॉर्निंग में कुछ शॉवर्स जो है वो पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद क्लाउड्स ग्रेजुअली क्लियर होने की पॉसिबिलिटी है। डे टाइम की बात करें तो उसका टेम्परेचर अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो अगर आप मॉर्निंग में बाहर निकल रहे हैं तो अम्ब्रेला हैंडी रखिए जस्ट इन केस। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बेन में आप सभी सुन रहे हैं ये प्यारे प्यारे से ट्रैक्स। ब्रिस्बेन में दोस्तों फैशन लवर्स के लिए भी ये वीक काफी एक्साइटिंग है। ब्रिस्बेन फैशन फेस्टिवल की बात करें यानी कि 2026 जो कि चल रहा है, जैसे आप सभी से कहा था कि 24 अगस्त से ये शुरू हो चुका है और 28 अगस्त तक ये हो रहा है। सो वेडनेसडे यानी कि आज 26 ऑफ अगस्त है। सो आज ब्रिस्बेन सिटी हॉल में हैंकॉक प्रोस्पेक्टिंग नेक्स्ट जेन ग्रुप शो होगा। शो में एमर्जिंग डिजाइनर्स, फैशन स्टूडेंट्स और न्यू क्रिएटिव टैलेंट अपना वर्क शोकेस करेंगे। इवेंट में दोस्तों क्यूट फैशन एंड टेफ क्विंसलैंड ब्रिस्बेन जैसे नेम्स भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपको फैशन, क्रिएटिविटी एंड न्यू ट्रेंड्स पसंद है ना, सो ब्रिस्बेन इज डेफिनेटली द प्लेस टू बी एट दिस वीक। सो जरूर जाइए और इंजॉय कीजिए इस वीक को। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बानी में। सो दोस्तों, एंटरटेनमेंट की दुनिया को हम कैसे छोड़ सकते हैं जी, यहाँ पर भी बहुत सी इंटरेस्टिंग अपडेट आती है जो कि आपसे शेयर करनी बनती है। ऑस्ट्रेलियन बॉक्स ऑफिस पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने अपनी स्ट्रांग रन कंटिन्यू रखी है और फोर्थ वीक में भी टॉप पोजिशन मेंटेन की है। वहीं पर अगर हम इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर ने भी बात करें तो ऑस्ट्रेलियन बॉक्स ऑफिस पर थर्ड पोजिशन से डेब्यूट किया है। तो अगर दोस्तों वीकेंड के लिए मूवी प्लान बना रहे हैं ना, तो स्पाइडरमैन या फिर हॉरर, आप किस टीम में हैं? सुपर हीरो टीम या फिर हॉरर टीम, जरूर बताइएगा। वैसे कुछ भी देख लो, मजा तो आने ही वाला है। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बानी।

वेलकम बैक जो रेडियो ब्रिस्बेन में। सो दोस्तों, स्पोर्ट्स अपडेट की यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट सेकंड टेस्ट में स्ट्रांग कमबैक किया है। ऑस्ट्रेलिया ने 51 रन से विक्ट्री सिक्योर की है और बॉलर्स मिचेल स्टार्क और पैट क्यूमिंस ने भी इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंसेस दी है। ये विन जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट है, स्पेशली फर्स्ट टेस्ट में बांग्लादेश के अगेंस्ट शॉक डिफीट के बाद। तो आइए जिसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन। जाइएगा कहीं भी मत, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें अभी बाकी है।

हां जी मेरे म्यूजिक लवर्स, आपके लिए भी भाई एक फ्रेश अपडेट जरूर है। सिंगर प्रोड्यूसर अंडरस्कोर्स ऑस्ट्रेलिया में भाई दिसंबर 2026 में टूर करेंगी। उनका ऑस्ट्रेलियन टूर ब्रिस्बेन, मेलबर्न और सिडनी तक जाएगा और स्पेशल गेस्ट उमरू भी उनके साथ परफॉर्म करेंगे। और अगर आप क्लासिक म्यूजिक के फैन हैं, अ ब्यूटीफुल नॉइस द नील डायमंड म्यूजिकल भी ऑस्ट्रेलिया रन के बाद ब्रिस्बेन आ रहा है। मतलब कि ब्रिस्बेन का एंटरटेनमेंट कैलेंडर भाई ऑलरेडी काफी पैक्ड है, सो आपको बोर होने की जरूरत नहीं है, आप बोर हो ही नहीं सकते क्योंकि भाई बहुत मजेदार इवेंट्स जो है यहाँ पे होने वाले हैं। तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

हां जी सो भाई जस्ट लाइक दैट हम आ गए हैं आज के ब्रिस्बानी मॉर्निंग शो के एंड पर। आज हमने दोस्तों ब्रिस्बेन के वेदर की जानकारी ली है। सो हम लोगों ने फैशन, एंटरटेनमेंट, क्रिकेट, म्यूजिक तक को सबको कवर किया है। लेकिन जाने से पहले एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, योर मॉर्निंग डजंट हैव टू बी परफेक्ट, इट जस्ट नीड्स अ पॉजिटिव बिगनिंग। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजी चानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी। अपना ख्याल रखिएगा, सेफली ड्राइव कीजिएगा एंड स्माइल तो हमेशा भी करते रहना है, छोड़ना नहीं है। और हाँ, कल फिर मिलेंगे सेम रेडियो सेम एनर्जी बट विद अ ब्रांड न्यू मॉर्निंग के साथ। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे काइंड एंड कीप शाइनिंग ब्रिस्बेन। टेक केयर।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 एम। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चीन ने बनाया हवा से हवा में वार करने वाला हाइपरसोनिक व्हीकल। चीनी सेना ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल विकसित किए हैं जो हवा से हवा में मार करने वाले हथियार दाग सकते हैं। इसका मकसद हजारों मील दूर मौजूद कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट जैसे अहम लक्ष्यों को निशाना बनाना है। 150 दिनों में फीका पड़ा बालिन शाह का जादू, काठमांडू में जेंजी मांग रहे इस्तीफा। नेपाल में बालिन शाह की सरकार को बनाने वाले जेंजी अब खुद इसी सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। नेपाल में नई सरकार को बने जहां 150 दिन भी नहीं हुए हैं, वहीं बालिन शाह को लोगों के गुस्से, संसद के दबाव और पार्टी की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। बालिन शाह के प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने बाद ही युवा प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे की मांग को लेकर काठमांडू के माइती घर मंडला में फिर जमा हुए। ब्रिक्स समिट के लिए भारत आ सकते हैं शी जिनफिंग, 400 लोगों का दल भी होगा साथ। अगले महीने दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनफिंग भारत आ सकते हैं। उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी होगा। ये 7 वर्षों में उनकी पहली भारत यात्रा है और दोनों प्रतिद्वंदी देशों के बीच संबंधों में सुधार का एक नया संकेत है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। भारत में घुसपैठ की फिराक में हजारों आतंकी, पाकिस्तान में फिर पैर पसार रहे लश्कर का नापाक प्लान हुआ लीक। भारतीय खुफिया एजेंसियों की हालिया रिपोर्टों में सीमा पार पनप रहे आतंक को लेकर एक बार फिर बड़े खतरे की ओर इशारा सामने आया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से छनकर आ रही जानकारियों के मुताबिक प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा पूरे पाकिस्तान में बेहद सुनियोजित तरीके से अपने पैर पसार रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय पाकिस्तान का सिंध प्रांत बन गया है, जहां बीते महज 1 साल के भीतर इस आतंकी संगठन ने 7 नए मरकज और मस्जिदों का निर्माण कर लिया है। इस खुफिया रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन संदिग्ध निर्माणों और आतंकी सुविधाओं के लिए पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान खुद सीधे तौर पर भारी वित्तीय मदद मुहैया करा रहा है। राजनीति और युद्ध एक दूसरे से अलग नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पूर्व CDS जनरल अनिल चौहान। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में आयोजित विमर्श कार्यक्रम के दौरान पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर और उसके दूरगामी रणनीतिक प्रभावों की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक शासन के गहरे संबंध को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि सैन्य शक्ति वास्तव में राजनीतिक इच्छा शक्ति का ही सीधा विस्तार होती है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता
1: जी. हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेडियो मिजवानी पर. नमस्ते अमिता.
2: नमस्ते. गुड मॉर्निंग. नमस्ते एवरीवन. टुडे इज द 26th ऑफ अगस्त.
1: सबको प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल सभी को. उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों
2: जी.
1: लेकिन चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं. पहले अपना कुछ क्या बोलते हैं
2: फिजी का खबर
1: वो सब लेकर आएंगे. लेकिन उससे पहले
2: मौसम
1: आज बारिश

0: मेरे गली आ जाना ये ऊच
1: आउच हाउ इज दैट बैक ऑफ योर्स
0: आउच या एनीवे गॉट अ रिक्वेस्ट टू
1: यस
0: एंड यू आल्सो वांटेड टू प्ले दैट सॉन्ग
1: या माइट एज़ वेल प्ले इट नाउ
0: प्ले इट नाउ या
1: व्हाइल इट्स अ रिक्वेस्ट व्हाइल इट्स फ्रेश इन द हेड
0: या ओके
1: ओके हियर वी गो.

0: जी हाँ दोस्तों, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं। और क्या, थैंक्स फॉर दी क्या बोलते हैं, फॉर दी
1: What are you
0: फॉर द
1: talking?
0: टेक्स्ट ना
1: Oh
0: ना
1: my God! Are you?
0: आई एम लुकिंग फॉर समथिंग दैट आई वांट टू प्ले, वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई प्ले दैट।
1: Oh, okay.
0: Yeah, because the time is running out.
1: Oh.
0: So I thought I did get it, but anyway, I'll see a bit later.
1: Okay.
0: Okay, maybe while you play the other song. Main khoj raha hu, agar mil gaya to I'll play it. Okay,
1: Okay.
0: all right,
1: Here we
0: okay,
1: go.
0: yeah.

रेडियो बिजबानी सुन रहे हैं दोस्तों, और एक और रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, एक पुराना गीत है दोस्तों। चलो, आपका जो रिक्वेस्ट है हम बजाएंगे, वी डू इट फॉर यू, सो यू कैन ओके, जो कुछ आप सुनना चाहें अगर होगा हमारे पास तो हम प्ले करेंगे आपके लिए। फिल्म ब्लव मास्टर का गीत है, कल्याण जी आनंद जी के संगीत पर आप सुनेंगे, मुकेश शमी कपूर के लिए।

0: जी हाँ दोस्तों, सोचा था प्यार हम ना करेंगे, ये कभी हो सकता है? प्यार को कोई छोड़ देते, लेट इट स्लाइड.
1: थिंक यू
0: प्यार
1: नॉट
0: को
1: गोइंग टू एंड देन यू गो फॉल स्ट्रेट इन.
0: And you don't even know.
1: You don't even know. You've got hit by the bug.
0: सोचा था प्यार हम ना करेंगे, मगर फिर भी दिल किसी पर आ गया. दिल का अपना own mind.
1: It's got its own mind.
0: Own
1: exactly.
0: Mind. Yeah, okay. All right. Another request. You had a.
1: We had a request earlier.
0: Yep.
1: I got the song.
0: Okay, let's play
1: Shobaji,
0: that.
1: Shobaji, you wanted the song.
0: Okay, here we go.

0: We have to come back.
1: Oh, that just takes you right away.
0: Yep. अच्छा किसी ने भेजा मेरे पास जाने क्या बात हम कर रहे हैं भजन जैमिंग वाला जो इट्स मोस्टली द यंग वंस लव इट
1: वेल इट्स वेरी वेरी पॉपुलर

Marseille, Saint-Laurent.

कांटे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था

अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

और समय कम होने लगा है दोस्तों, तो क्यों नहीं चलो एक गीत और मेरे ओर से आप सभी के लिए, शमी कपूर और जय श्री के राजश्री के लिए, फिल्म जानवर 1965 का गाना है दोस्तों, ठीक है सुनते हैं।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसी कट रही है आज की सुबह? जबरदस्त। और वो जो अभी तक उठे भी नहीं है भाई, उनसे क्या ही गुफ्तगू करें कि कैसी है सुबह। तो जल्दी से उठिए और हमारे साथ शेयर कीजिए कि आज क्या है प्लानिंग्स, क्या खास करने वाले हैं और किस तरह से आज के दिन को आप स्पेंड करने वाले हैं, किस तरह से गुजारने वाले हैं, सब कुछ हमारे साथ बताइए। हमें बताइए भाई कि आज क्या क्या गोल्स हैं आपके, क्या क्या गोल्स के सेटअप हैं। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इट हैपेंस रेडियो प्रस्थानी पर। हमेशा की तरह मैं सताक्षी हूँ आपके साथ और मेरे साथ मिर्जात, सुबह की शुरुआत और बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग ट्रैक्स। तो चलिए बिना देर किए शो को शुरू करते हैं ताकि वो लोग भी हमसे जल्दी से जुड़ जाएं जो अभी तक सो रहे हैं। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्थानी। एक बार फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग, एंजॉय कीजिए ये अगला ट्रैक।

वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन. आप सुन रहे हैं रीटू ब्रिस्वानी पर सताक्षी को आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में. और इट हैपेंस में चलिए आगे बढ़ते हैं, शो की शुरुआत करते हैं उनके साथ जिनके लिए आज का दिन बहुत ही खास. जी हाँ, अगर आज आपका हैप्पी बर्थडे है तो भाई जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं. हमें पता है कि ये पल, ये दिन, ये वक्त आपके लिए बहुत ही खास और स्पेशल, इसे और भी स्पेशल बना रहा है रेडियो ब्रिस्वानी आपके लिए. जिंदगी में आपको वो सब मिले जो आपके लिए सही है और जिसके लिए आपने जी जान से मेहनत की है. जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है उन सभी को शादी का ये दिन, शादी का ये मौका, ये जो एक और मौका आपकी जिंदगी में आया है इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने का, ये बहुत मुबारक हो. और ईश्वर करे कि ये साथ जो है ये जन्म जन्मांतर तक यूं ही बना रहे. और जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और खास है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं इस अगले ट्रैक के साथ. हमें सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 FM.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818. दैट्स 3804-3818.
3: कल मेरी शादी है, आज आजादी है।

0: Lima, bora.
1: वेलकम बैक, इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ आपके अपनी रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर। यू नो, जरूरत के सामान से इंसान घर भरता है, लेकिन बेमतलब के और जिन चीजों की जरूरत ना हो उन सामानों से इंसान सिर्फ मन भरता है। तो अपने आप को थोड़ी सी आजादी दीजिए, कभी कोई किताब, कभी कोई पौधा, कभी कोई चीज अपने ख्याल से भी खरीद लीजिए, क्योंकि जरूरतों से हम जिंदगी बनाते हैं, लेकिन इन्हीं बेकार की जरूरतों से, इन्हीं बेकार की चीजों से हम अपनी जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं। चलिए फिर इन्हीं बेकार की चीजों के नाम, जिनको देखकर, जिनको खरीदकर, जिनको लेकर या जिनको सजाकर हमें खुशी मिलती है, उन चीजों के नाम सुनते हैं ये अगला ट्रैक। हमें सुनते रहिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर।

नो, एक वक्त होता है जब आप खुद को दूसरों की नजर से देखते हैं। कोई अगर आपको पसंद करे तो आप अच्छे, और अगर लोग ना पसंद करें तो आपको खुद में ही कमी नजर आती है। पर कुछ वक्त बाद आपको समझ आता है कि हर किसी को पसंद आना आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है। आप जिसे पसंद हैं वो भी ठीक, वरना आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। और ये वो वक्त भी होता है जब आप किसी और के कहने का इंतजार नहीं करते कि आप खूबसूरत हैं। बस अब आप खुद को ही आईने में देखकर मुस्कुराना सीख जाते हैं, खुश रहना सीख जाते हैं और अपने आप को समझना सीख जाते हैं। तो जो लोग आज अपने आप को समझते हैं, जो लोग अपनी तारीफ खुद कर लेते हैं, जिन्हें दूसरों के किए गए कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें दूसरों की उनके बारे में क्या राय है इससे फर्क नहीं पड़ता, उनके नाम है ये अगला ट्रैक। हमारे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रसवानी।

वेलकम बैक, इट हैपन सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर, और अभी हम हैं गानों की हैट्रिक में। सो आइए देखते हैं आज गानों की हैट्रिक के तीन ट्रैक जो हम आपके लिए लेकर आए हैं कौन से हैं। गानों की हैट्रिक एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी पर। आइए गानों की हैट्रिक में आगे चलते हैं इस अगले ट्रैक के साथ।

गानों की हैट्रिक रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर आप सुन रहे हैं। चलिए गानों की हैट्रिक में आगे बढ़ते हैं इस एक और ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी और इसके उस पार इट हैपेंस में होंगी फिर से आपके साथ ढेर सारी बातें।

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। बारिश की सबसे खूबसूरत बात पता क्या है कि ये सब पर एक तरह से बरसती है, एक बराबर बरसती है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि कोई तो उसमें भीग कर मुस्कुराता है और कोई अपनी खिड़कियां बंद करके सिर्फ शिकायत करता रहता है। जिंदगी भी बिल्कुल बारिश जैसी होती है। हालात सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन कोई उन हालातों को बोझ समझता है और कोई उनके साथ जीना सीख लेता है। तो खुशियां हमेशा धूप में नहीं मिलती हैं, कभी कभी बारिश में भी भीगना पड़ता है। और जो इंसान हर सिचुएशन में मुस्कुराना सीख जाता है, फिर जिंदगी उसे हरा नहीं सकती, है ना। आइए फिर अपनी जिंदगी के नाम, जिंदगी की जो भी सिचुएशन है उसके नाम सुनते हैं ये अगला ट्रैक। हमें सुनते रहिए इट हैपेंस में रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर।

सो वेलकम बैक टैपेंस में है सताक्षी के साथ हैं आप रेडियो प्रस्तानी 1701 एम पर। अगर डायमंड पर कीचड़ लग जाए तो क्या उसकी वैल्यू कम हो जाती है? शायद नहीं, शायद क्या डेफिनेटली नहीं। तो फिर आप क्यों दूसरों की बातों से वो आपके बारे में क्या सोचते या क्या कहते हैं इस वजह से अपनी वर्थ को गिरा देते हैं? देखिए, आपका टाइम बुरा हो सकता है लेकिन आपकी वैल्यू नहीं। लोग आपको वैसे ही देखते हैं जैसे वो एक्चुअली हैं, लेकिन आप वैसे ही रहेंगे जैसे आप हैं। इसीलिए अपनी वैल्यू को किसी और के ओपिनियन से डिसाइड मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत स्पेशल हैं और जिस तरह से आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ है ना। तो खुद की वर्थ को पहचानिए, खुद की रिस्पेक्ट को पहचानिए। और चलिए इसी बात पर आपके लिए प्ले करते हैं एक और ट्रैक। अभी हमारे साथ सुनते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्पानी 1701।